मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ष पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि पहली, तदनुसार 22 जून 2026 ईस्वी। श्रोताओं,

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का।
1: संसार में एहन के अछि जकरा ऐहिक सुखक कामना नहीं हो। संसारक समस्त क्रिया व्यापार सुखे के लेल संचालित होइ छ। मानवीय संबंधों यह उत्सथिक आ स्वजन परिजनादिक जे शब्दावली अछि तकरो सुखे के लालसा परिभाषित करै छ। मुदा मनुष्यक उत्कर्ष त तखन सिद्ध होइ छ जखन ओ आनक सुखक लेल अपन सुखक त्याग कऽ दै छ, अनका सुखी देखबाक हेतु अपन समस्त मनोरथक बलि दऽ दै छ। प्राचीन भारत में भेलाह राजा शर्याति, हुनक कन्याक नाव छलनि सुकन्या, यथा नाम तथा गुण। सुकन्या अतुलित रूप वैभव आ गुण सँ संपन्न छलीह। राजा शर्याति हुनका योग्य वरक अन्वेषण में दिन राति एक केने छलाह। तखन ही च्यवन ऋषिक दृष्टि सुकन्या पर पड़ल, ओ सुकन्या पर अनुरक्त भऽ गेलाह। राजा शर्यातिक समक्ष सुकन्या सँ विवाह करबाक प्रस्ताव राखलनि। राजा शर्याति गाछ पर सँ खसलाह, कहाँ सुंदरता में अप्सरों के लज्जित के निहारी, गुणक खैनी ऐश्वर्य में पालिता कोमलांगी सुकन्या, आ कहाँ रुक्ष जटा सँ युक्त क्षीण काय कुरूप आ दरिद्र च्यवन। शर्याति प्रस्ताव के स्वीकार नहीं कर सकला। ऋषि क्रुद्ध भ गेला, शर्यातिक राज्य में अशांति उत्पन्न कर दिलन। अनावृष्टि भूचाल आ महामारी सँ प्रजा त्राहि त्राहि क उठल। शर्यातिक आगा दुइटा विकल्प छल, ऋषि के सुकन्या दान क देव वा अपना प्रजा के अपने सोझा में मरित देखब। राजा किंकर्तव्य विमूढ़ भ गेलाह, मुदा सुकन्या च्यवन के वरण करबाक निश्चय कलनि। व्यक्तिगत दुख सँ प्रजाक दुख नमहर छल, प्रजाक सुख शांतिक लेल ओ स्त्री सुलभ समस्त आकांक्षाक बलि दऽ देलनि। ऋषि के अंगीकार कय सुकन्या प्रजा के आसन्न सर्वनाश सँ बचा लेलनि। व्यक्तिगत सुखक बलि दऽ कऽ सर्वे भवन्तु सुखिनः के सार्थक कलनि।
2: संसार में एहन के अछि जकरा ऐहिक सुखक कामना नहीं हो। संसारक समस्त क्रिया व्यापार सुखे के लेल संचालित होइ छ। मानवीय संबंधों यह उत्सथिक आ स्वजन परिजनादिक जे शब्दावली अछि तकरो सुखे के लालसा परिभाषित करै छ। मुदा मनुष्यक उत्कर्ष त तखन सिद्ध होइ छ जखन ओ आनक सुखक लेल अपन सुखक त्याग कऽ दै छ, अनका सुखी देखबाक हेतु अपन समस्त मनोरथक बलि दऽ दै छ। प्राचीन भारत में भेलाह राज

0: मुदा मनुष्यक उत्कर्षता तखन सिद्ध होइत छै जखन ओ आनक सुखक लेल अपन सुखक त्याग कऽ दैत छै, अनका सुखी देखबाक हेतु अपन समस्त मनोरथक बलि दऽ दैत छै। प्राचीन भारतमे भेलाह राजा शर्याति, हुनक कन्याक नाम छलनि सुकन्या, यथा नाम तथा गुण। सुकन्या अतुलित रूप वैभव आ गुण सँ सम्पन्न छलीह। राजा शर्याति हुनका योग्य वरक अन्वेषणमे दिन राति एक केने छलाह। तखनहि च्यवन ऋषिक दृष्टि सुकन्या पर पड़ल, ओ सुकन्या पर अनुरक्त भऽ गेलाह। राजा शर्यातिक समक्ष सुकन्या सँ विवाह करबाक प्रस्ताव राखलनि। राजा शर्याति गाछ पर सँ खसलाह, कहाँ सुंदरतामे अप्सरोंके लज्जित केनिहारी, गुणक खानी, ऐश्वर्यमे पालिता कोमलांगी सुकन्या, आ कहाँ रुक्ष जटासँ युक्त क्षीणकाय कुरूप आ दरिद्र च्यवन। शर्याति प्रस्तावकेँ स्वीकार नहि कऽ सकलाह। ऋषि क्रुद्ध भऽ गेलाह, शर्यातिक राज्यमे अशांति उत्पन्न कऽ देलनि। अनावृष्टि, भूचाल आ महामारी सँ प्रजा त्राहि त्राहि कऽ उठल। शर्यातिक आगाँ दुइयेटा विकल्प छल, ऋषिकेँ सुकन्या दान कऽ देब वा अपना प्रजाकेँ अपने सोझामे मरित देखब। राजा किंकर्तव्य विमूढ़ भऽ गेलाह, मुदा सुकन्या च्यवनकेँ वरण करबाक निश्चय कयलनि। व्यक्तिगत दुःखसँ प्रजाक दुख नमहर छल, प्रजाक सुख शांतिक लेल ओ स्त्री सुलभ समस्त आकांक्षाक बलि दऽ देलनि। ऋषिकेँ अंगीकार कए सुकन्या प्रजाकेँ आसन्न सर्वनाशसँ बचा लेलनि। व्यक्तिगत सुखक बलि दऽ कऽ सर्वे भवन्तु सुखिनाकेँ सार्थक कयलनि।
1: सुरेंद्र झा से अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन, प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, हम सब खेती करैत छी तऽ सतत फसलक उपजा मनोनुकूल चाहैत छी, जाहि लेल माटिक स्वास्थ्य ओ एकर उर्वरा शक्ति पर ध्यान देबय पड़त। माटि जखन स्वस्थ रहत तखने लगाओल गेल फसिल बेर पर ओ व्यावसायिक दृष्टिसँ नीक होयत। एहि लेल ई आवश्यक भऽ जाइत अछि जे कोनो फसलके लगयबासँ पहिने खेतक माटिक जाँच करा लेबाक चाही, कारण माटिक जाँच करौलासँ हमरा सबके ई बुझबामे अबैत अछि जे खेतक माटिमे कोन कोन पोषक तत्वक कमी अछि अथवा कोन कोन पोषक तत्वक अधिकता अछि, माटिक सूक्ष्म पोषक तत्व केहन स्थिति अछि, माटिक पीएच कतेक अछि, माटि केहन प्रकारक अछि इत्यादि। माटिक जाँचक महत्वके बुझैत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाओल गेल अछि, जकर मुख्य उद्देश्य माटिक स्वास्थ्यक परीक्षण करब अछि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाके अंग्रेजीमे सॉयल हेल्थ कार्ड सेहो कहल जाइत अछि। एहि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाके 19 फरवरी 2015 सँ प्रारम्भ कयल गेल, जाहि अंतर्गत किसान भाइ बहिन लोकनि अपन अपन खेतक माटिक जाँच करा सकैत छथि, जाहि लेल सरकार द्वारा पंजीयन करबाक प्रावधान कयल गेल अछि। ओ पंजीकृत लोकनिकेँ एक गोट कार्ड उपलब्ध कराओल जाइत छनि, जाहि पर माटिक प्रकार, उर्वरक अनुशंसा इत्यादि सूचना अंकित रहत। पंजीयन ऑनलाइन सेहो कराओल जा सकैत अछि। पंजीयनक लेल राजस्व गामक निवासी होयबाक चाही, तखने ई सुविधा उपलब्ध भऽ सकतनि। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सँ लाभ उठयबाक लेल माटिक नमूना देल गेल दिशा निर्देशक अनुसारे एकत्र कऽ कऽ जिला स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला मे पठेबाक चाही। एतय पठाओल गेल माटिक जाँच निःशुल्क कयल जाइत अछि। ओ 10 दिनक भीतर जोत धारक के मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा देल जाइत अछि। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराओल जाइत अछि, जाहि पर माटिक जाँचक पश्चात ब्यौरा देल जाइत अछि। ई ध्यान रहय जे माटिक नमूना के माटि जाँच प्रयोगशाला मे देबाक प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कऽ लेबाक चाही। किसान भाई बहिन लोकनि, जाँचक

0: लेल माटिक नमूना सावधानी पूर्वक एकत्र करबाक चाही। जेना माटि खेतक आरि पर सँ अथवा एकर कात सँ नहि लेक, माटि पैघ कोला रहला पर 2 सँ 3 ठाम सँ लेबाक चाही। माटिक नमूना छायादार स्थान अथवा गोबरयुक्त ठाम सँ नहि लेक। एकत्र कयल गेल नमूना के साफ पॉलिथीनक झोरा मे राखि कऽ ओ एहिमे अपन नाम, पता, फसिल लेबाक इच्छा इत्यादि ब्यौरा एकटा कागज पर पेंसिल सँ लिख कऽ राखि दियैक। फेर झोराक मुँह के बान्हि कऽ माटि जार प्रयोगशाला मे पठाबी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाक माध्यम सँ जोत धारक के माटि के सुधारबाक विधि सेहो बताओल जाइत अछि, जाहि अंतर्गत जैविक खेती के प्रोत्साहन देबाक।
1: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। समय है समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।

0: तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। विषय है हार्ट अटैक और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण से जानकारी प्राप्त करते हैं हार्ट अटैक यानी हृदय आघात के बारे में। डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, ये हृदय आघात यानी हार्ट अटैक है क्या?
3: हार्ट अटैक का कारण है कि जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है ब्लड, उसमें रुकावट हो जाना, सडनली बंद हो जाना, और वो बंद होने के कारण जो हार्ट को सप्लाई कम से कम हो जाता है, इस कारण से छाती दर्द ये सब होने लगता है, ये हार्ट अटैक है आपका।
2: कारण क्या है?
3: जो 90% जो कारण है वो है प्लाक, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना हार्ट में, और हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का फट जाना, जमा होकर फट जाने, इस कारण सडनली वो बंद हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे मेन कारण होता है हार्ट अटैक वाले का।
2: कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी?
3: चर्बी, चर्बी।
2: सिम्टम्स क्या है, लक्षण?
3: लक्षण में जैसे छाती में दर्द होना, छाती में ही नहीं, आपका जबड़ा से लेके पेट के अपनी ऊपर हिस्से तक दर्द होना हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको दोनों बाहों में दर्द होना, खासकर बाएं बाहों में दर्द होना, पीछे दर्द होना, बैक में दर्द होना, कहीं भी आपको ऊपरी छाती के आसपास में बाह के रीजन में दर्द होता है, ये हार्ट अटैक का लक्षण है। आपको अत्यधिक गैस बनना, गैस भी लक्षण है। तीसरा चीज जो है वो पसीना आना, सडनली पसीना आ रहा है, आप बेहोश हो रहे हैं सडनली, आपका सांस फूल रहा है, तो ये सब अमूमन लक्षण होता है हार्ट अटैक का।
2: हार्ट अटैक के लिए खतरे की बातें क्या है?
3: सबसे जो रिस्क फैक्टर जेनेटिक होता है, हमेशा हम पूछते हैं कि भाई आपको फैमिली हिस्ट्री क्या है हार्ट अटैक की। लोग कहते हैं भाई हम तो कुछ नहीं करते लेकिन अटैक हो गया, तो बड़ा रिस्क फैक्टर एक फैमिली हिस्ट्री है। उसके बाद आपका आता है लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स, सिगरेट का पीना, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाना, नहीं टहलना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये रिस्क फैक्टर हो गया। आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ये एक रिस्क फैक्टर है। तो नॉर्मली स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एक्सेसिव फैटी फूड, लैक ऑफ वॉकिंग और जेनेटिक फैक्टर, ये सब जो फैक्टर है अटैक को बढ़ाता है।
2: अल्कोहल,
3: शराब जो है आपके सब ऑर्गन को खराब करता है, इसलिए बिल्कुल दूर ही रहें इससे, शराब से बिल्कुल दूर रहें।
2: खतरे में कौन है? डायबिटिक लोग या जिन्हें अन्य बीमारियां हैं, क्या वो हार्ट अटैक के लिए?
3: जी बिल्कुल, डायबिटिक में क्या होता है कि आपका एक पहले से टेंडेंसी है आर्टरी नैरो होता है। जो नॉर्मल डायबिटिक आदमी, नॉर्मल पर्सन में और डायबिटिक पर्सन में लोग एंजियोग्राफी करते हैं, डायबिटिक्स का आर्टरी पहले से ही पतला होता है, डिफ्यूजली डिजीज होता है वो, तो अब हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है डायबिटीज में, पहली बात। दूसरी बात है कि डायबिटीज वाले को ब्लॉकेज जो होता है एक आर्टरी में नहीं, वो मल्टीपल आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, एक साथ सब आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है। तीसरी बात, डायबिटीज वाले को ज़्यादातर आपको बाईपास की सलाह दी जाती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाता है। तो नंबर वन, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक है, खासकर जो यंग स्मोकर्स जो होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं 40 साल से पहले, उसको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसमें अटैक के बाद कॉम्प्लिकेशन चांस ज्यादा रहते हैं क्योंकि कोलेटरस नहीं बना होता है। कोलेटरस एक होता है जो कि एक बन जाता है कभी कभी ओल्ड एज में, लेकिन यंग में होता नहीं कोलेटरस, इसलिए चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है आपकी यंग पर्सन में।
2: जांच क्या करवाते हैं इसके लिए?
3: जी शुरुआती जांच में जैसे एक ECG हो गया, ECG में हम लोग नॉर्मल आपका ECG करते हैं, फिर आपका एक ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, इसमें हम लोग ECG लगाते हैं और आपको एक मशीन होता है ट्रेडमिल करके, उसमें चला के देखते हैं कि भाई चलने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। उसके बाद एक इकोकार्डियोग्राफी जांच होता है, फिर हम लोग जो कंफर्म करते हैं वो एंजियोग्राफी से करते हैं। एंजियोग्राफी नॉर्मली एक सुई के द्वारा होता है, बहुत छोटी सी जांच है, सुई के साइज का एक नीडल होता है जिसको हम लोग हाथ की नस या पैर की नस में घुसा के हार्ट तक पतली

0: PCR कैथेटर ले जाते हैं जहाँ से हम लोग कॉन्ट्रास्ट और डाई डाल के देख लेते हैं कि कितना कितना ब्लॉकेज है सब में,
1: और उसके बाद अगर कंफर्म हो गया कि ब्लॉकेज है तो फिर ट्रीटमेंट क्या है?
0: ट्रीटमेंट जो अटैक का है, दो तीन तरह का ट्रीटमेंट है। जो शुरुआती ट्रीटमेंट था वो हम लोग रेस्ट था खाली, उसके बाद इवॉल्व थोड़ा सा और आगे आया तो हम लोग का मेडिकल थ्रोम्बोलिसिस आने लगा, जिसमें कि दवाई के द्वारा घुलने लगा आर्टरी, लेकिन उससे चांसेस था ब्रेन हेमरेज होने का ज़्यादा। अब जो सबसे अच्छा इलाज है वो है हम लोग का एंजियोप्लास्टी कहते हैं, जैसे ब्लॉकेज हुआ उसमें क्या करते हैं कैथेटर के थ्रू ही एक पतली तार घुसा देते हैं आर्टरी में, बैलून से उसको खोल देते हैं और वहाँ पे एक स्टेंट लगा देते हैं।
1: जी, जिन्हें एक बार अटैक आ गया है उनके लिए क्या दूसरी बार या तीसरी बार अटैक होने का खतरा ज़्यादा होता है?
0: ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल आदमी है जिसको अटैक आ चुका है वो भी एक रिस्क फैक्टर ही है, जैसे आपका हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर, ऐसे एक प्रीवियस अटैक भी एक तरह से रिस्क फैक्टर है।
1: लाइफ स्टाइल के बारे में, खान पान, रहन सहन,
0: जी जी
1: ये सारी चीजें,
0: बिल्कुल आपका समय से सोना सबसे इम्पोर्टेंट है, समय से जागना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जागने के बाद जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, जैसे कि वॉक करना है, योगा करना, प्राणायाम करना, वो करना जरूरी है। आप डाइट ले, आप संतुलित आहार ले, अपना फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ये सेवन बढ़ाए, फैटी चीज़, ऑयली चीज़, तला भुना चीज़ कम ले, मीठी चीज़ का भी से, जैसे पहले नमक कम था, आप शुगर कम भी हम लोग कहते हैं, मीठी चीज़ कम से कम ले, डायबिटिक नहीं है तो भी कम ले आप।
1: चलते चलते क्या सलाह देंगे?
0: बिल्कुल हार्ट से अटैक से घबराए नहीं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है लेकिन सबसे खतरनाक ये चीज़ है, बिल्कुल सब लक्षण को नज़रअंदाज न करें।
2: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे हार्ट अटैक। डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण से बातचीत कर रहे थे संजय कुमार। सुनिए भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना, पहले ये देशगान।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। अभी आपने सुना देशगान। आइए एक सुंदर सा शिव भजन सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वर में।

सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे शिव भजन। अगला भजन हम आपको सुनवा रहे हैं सिद्धार्थ मोहन के स्वर में।

कार्यक्रम वंदना की अगली प्रस्तुति अंबे भजन, स्वर अनुराधा पौडवाल का।

अनुराधा प्रोडवाल के इसी भजन के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, स्वर वाणी जयराम का।

श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। दिन के 10 आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनते हैं दिन के 11:00। 11:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। नए फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे दिन के 12:00। 12:30 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। देशभक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:10 पर। 1:15 और 2:30 पर आप पुनः आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। दो बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना।

लोक गीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे अपराह्न 3 बजे। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

नए फिल्मी गानों का पुनः प्रसारण होगा शाम 5:40 पर। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे 6:10 पर। मैथिली संवाद आप सुनेंगे 6:25 पर हमारे पटना केंद्र से।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अनुभव के चश्मा सौ 6:30 पर। शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। फिल्म संगीत आपको हम सुनवाएंगे 7:52 पर। 8:15 पर होगा मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। 10:00 तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, समय हो चला है समाचारों का, तो अब आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत एवं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, समय हो चला है समाचारों का, तो अब आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत एवं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

0: राष्ट्रीय आपद मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5

0: गेंद शेष रहते चार विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार
0: और मेरी ओर से भी सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हूँ आपके साथ बबीता और जैसा कि हमारे श्रोताओं जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं एक सुविचार से। तो आज का सुविचार है, आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। गौतम बुद्ध।
1: निश्चित तौर पर हम किताब से सीख लै छी, मुदा जा देर ओ सीख के अपन जीवन में नहीं उतारब ता देर ओ सीख अहाँ के कोनो काजक नहीं रह जाते अछि। किताब में बड़ निक निक गप सब लिखल रहते अछि, बहुत आदमी पढ़ितो छथि, मुदा ओकर बावजूद अगर जीवन में ओ चीज के नहीं उतारे छै त सफल नहीं भ सकै छी। ताहि दुआरे किताब पढ़ला के बाद ओकर जे निक, पहले तो निक किताब पढ़ी और निक किताब पढ़े के बाद ओकर जे निक सीख रहा तकरा जीवन में उतारब त सफल हेबे करब।
0: बिल्कुल, और कहे ना, कहते भी हैं लोग कि कितने भी अच्छी किताबें जब पढ़ लो और जब तक अपने जीवन में अपनाते हैं तभी जाके वो अपने समाज में, अपने देश में नाम रोशन कर पाते हैं। तो क्यों ना एक नज़र डालें आज के दिन इतिहास के आईने में क्यों है खास इस पे। तो आज 22 जून है और आज ही के दिन यानी 1900 में गणेश घोष का जन्म हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज ही के दिन यानी 22 जून 1932 में अमरीश पुरी का जन्म हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक थे। आज ही के दिन 22 जून 1932 में जगन्नाथ दासन का रत्नाकर का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते थे। 2000 में केदारनाथ अग्रवाल का निधन हुआ। वे हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि थे। आज ही के दिन यानी 22 जून 2007 को सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ धरती पर लौटी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया। तो ये थे आज के दिन इतिहास के आईने में क्यों है खास, इस पे हमने थोड़ी सी नज़र डाली। और क्यों ना आशीष जी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये मैथिली सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत विभा सिन्हा की आवाज़ में। और सुबह की शुरुआत जब भगवान का नाम लेके हो ना आशीष जी, तो दिन की शुरुआत अच्छी ही होती है और सकारात्मक रूप से होती है। और सकारात्मक रूप की बात करें तो हम जब सुबह सुबह उठते हैं, तो अभी जो आज का मौसम है, आज का मौसम अच्छा है। और जैसा कि देखिए ना, मौसम चेंज कर रहा है, और ये चेंज जब मौसम करता है तो कहीं ना कहीं हम सब पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसके लिए हम ज़रूरी है कि हम जो सुबह उठते हैं तो उठने का छोटा सा ही सैर, इसका हम ज़रूर अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि अगर ये करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं।

0: और प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। तो अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हो चला है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर नज़र डालने का, यानी हालचाल का, और हालचाल के साथ है आशीष कुमार सिंह। तो आइए सुनते हैं हालचाल।
1: धन्यवाद बबीता। आजुक हालचालक संग हम आशीष। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत आ नाट्य विभाग में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर वैश्वीकरण में संगीत के भूमिका विषय पर 5 दिवसीय संगीत कार्यशाला का शुभारंभ भेल। लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम का स्वरूप आब पूरा तरीका से बदलेवला अछि। राज्य सरकार स्टेडियम के राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करे के दिशा में पहल शुरू कर चुकल छथि। एकर अंतर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के स्टेडियम के उन्नयन और निर्माण कार्य के जिम्मेदारी सौंपल गेलन है। निगम के दिस से विकास के रूपरेखा तैयार कर लेल गेल अछि और डिजाइन के अंतिम रूप दे के प्रक्रिया चल रहल अछि। डिजाइन फाइनल होते निर्माण कार्य शुरू भ जायत। जानकारी के अनुसार एहि योजना में आधुनिक पवेलियन, खिलाड़ी सब के लेल ड्रेसिंग रूम, बेहतर दर्शक दीर्घा, शौचालय, पेयजल, प्रकाश के व्यवस्था आ अन्य बुनियादी सुविधा सब के निर्माण कराओल जायत। मैदान और खेल संबंधी आधारभूत संरचना के राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित कयल जायत, जैसे एत पैघ स्तर पर आयोजन कयल जा सके। संगे संगे छात्रावास के सेहो निर्माण होयत, 500 से बेसी एकर क्षमता रहत। मुहर्रम के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करबे के लेल काल रवि दिन सिंहवाड़ा थाना परिसर में SDPO सदर 2 SK सुमन के अध्यक्षता में शांति समिति के बैसार भेल। सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट UG पुनर्परीक्षा सम्पन्न भेल। दरभंगा में 7,840 परीक्षार्थी शामिल भेलत परीक्षा में और 872 अनुपस्थित रहलत। 16 केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न भेल। 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा में ई परीक्षा लेल गेल। CCTV, जैमर और साइबर कमांडो के निगरानी में संपन्न भेल ई परीक्षा। परीक्षा दौ के निकलल छात्र सबक अनुसार बायोलॉजी के पेपर आसान छल, फिजिक्स और केमिस्ट्री कनी फसलखिन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लेल आवेदन शुरू भ चुकल अछि और 10 जुलाई धरि शिक्षक अपन नामांकन कऽ सकै छथि। दरभंगा एयरपोर्ट से काल रवि दिन सबटा फ्लाइट के सबटा सीट फुल रहल। 180 सीटर फ्लाइट में करीब 179 लोक सवार छलत। 16 विमान उड़ल, जैसे 2800 से बेसी यात्री सफर कलत। दिल्ली और मुंबई रूट पर रहल सबसे बेसी भीड़ और चारू महानगर के लेल संचालित भेल विमान सेवा। अब दरभंगा जिला के 102 एम्बुलेंस में कार्यरत 312 कर्मी के देल जतन प्रशिक्षण। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के ट्रेनिंग से बदलत इमरजेंसी के स्वास्थ्य व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यवहार न्यायालय में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। दरभंगा जयपुर अमृत भारत एक्सप्रेस का फेरा के विस्तार कर देल गेल अछि। आब ई सप्ताह में 6 दिन ई ट्रेन चलत। ऐसे लोक सब के राहत भेटतन। सबठाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम सभक आयोजन भेल। लोक सब योग के माध्यम से स्वस्थ रह के संदेश दलत। नीट के पुनः परीक्षा शांतिपूर्ण आ कदाचार मुक्त माहौल में सबठाम संपन्न भ गेल। करजाइन क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत के वार्ड 7 में 2 दर्जन से बेसी लोग चेचक से प्रभावित भ चुकल छथि। पिछला 1 सप्ताह से ई तेजी से फैल रहल अछि। वीरपुर में मुहर्रम के शांति आ सौहार्द समन्वय के लेल शांति समिति के बैसार भेल। कोसी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी देखल जा रहल अछि। महिषी के स्थानीय रामशाला में विद्यापति चेतना समिति के बैसार भेल, जाहि में 26 जुलाई के पटना में होय वाला अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के तैयारी पर चर्चा कयल गेल। झंझारपुर नगर परिषद मानसून के लेल सफाई व्यवस्था के तैयारी तेज कऽ

0: रूकल छथि। झंझारपुर में कमला बलान नदी के जलस्तर पिछला 24 घंटा में 1 मीटर बढ़ल। राहत के गप कि एखन खतरा के निशान से नीचा अछि। लदनिया में 10 दिनक मिथिला पेंटिंग कार्यशाला के समापन भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी दोसर सेमेस्टर के परीक्षा आई 22 जून से शुरू भ रहल अछि। शिवहर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान सब के लेल धान के सीधा बुआई आ लेजर लैंड लेवलर के सुविधा शुरू भेल। मनियारी गाम में किसान चौपाल के आयोजन भेल। सरकारी स्कूल सब के शिक्षा विभाग 30 जून धरि मॉर्निंग क देलक। गर्मी छुट्टी के बाद आई से स्कूल सब खुजि रहल अछि। एहि संग संपन्न भेल आजुक ई हालचाल।
1: डालते हैं आज के मौसम पे। ग्रामीण कृषि मौसम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 20 जून से 24 जून 2026 तक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश भागों में गर्म एवं शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। 23 से 24 जून के दौरान 1 से 2 स्थानों पर 4 से 6 मिलीमीटर हल्का वर्षा हो सकती है, जबकि मधुबनी जिले में 24 जून को लगभग 65 से 70 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है, भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान अधिकांश जिलों में 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि सारण, गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण जैसे कुछ जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिसे लू की स्थिति बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 21 से 23 जून के दौरान बेगूस, सारण, सिवान, पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण के कई स्थानों पर लू हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अतिरिक्त इसके विपरीत दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों के कहीं कहीं मेघ गर्जन एवं तेज झोंकेदार हवा चलने का अनुमान है। सुबह की सापेक्ष आर्द्रता 65 से 70% तथा दोपहर में सापेक्ष आर्द्रता 25 से 23% रहने का अनुमान है। हवा मुक्त दिशा पूर्वी दिशा से 7 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान आकाश में हल्के बादल बने रह सकते हैं। तो ये थे आज के मौसम। वहीं हम लोकल अपडेट्स की बात करें तो मेडिसिन ओपीडी में आज इन डॉक्टरों की ड्यूटी रहेगी। डीएमसीएच की मेडिसिन ओपीडी में सोमवार को डॉक्टर यूसी झा, डॉक्टर आरके झा, डॉक्टर एके प्रसाद, डॉक्टर दुर्गेश की ड्यूटी रहेगी। वहीं न्यूरो ओपीडी में डॉक्टर स्नेह कुमार झा की उपस्थिति रहेगी। तो ये थे कुछ लोकल अपडेट्स। और हम अपने कार्यक्रम में बहुत सारी सामग्री के साथ साथ कुछ चर्चे भी लेके आए हैं, जिसे हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे कि आज के युवा और रोजगार, इससे जो शक्ति है वो कैसे अपने देश को विकास के प्रगति पे कैसे लेकर चल रही है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र पर जीएसटी का क्या प्रभाव है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम मौसम की ओर थोड़ा सा ध्यान दें कि मौसम जब भी बदलता है तो हर घर में आप देखेंगे कि लोग एक न एक बीमार पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम लोग असावधानी है इसका ही कारण होता है। जैसे कि देखिए, मौसम जब सही है और जब तेज़ धूप होती है तो घर से हम निकलने से पहले पानी पी के नहीं निकलते हैं, या फिर तेज़ धूप में निकलते हैं तो अपने साथ ना छाता होता है ना पानी होता है। तो ऐसे तो कोशिश करें कि अगर मौसम बहुत दोपहर में बिल्कुल ना निकले, अगर ज़रूरी है, अगर निकल रहे हैं तो 2-4 चीज़ अपने साथ ज़रूर लेकर चले, जैसे पानी का बॉटल हो, छाता हो, सूती कपड़ा हो, गमछा हो, या फिर सनग्लासेस हो। ये सब सारी चीज़ों अगर हम ले कर अपने साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम हर मौसम का मजा ले सकते हैं।

0: सकते हैं।
1: ओना एक इनके मौसम अगर अहाँ कहै छियै गर्मी मे कतौ जा रहल छियै, गर्मी मे आबि रहल छियै कतौ से, तऽ कनी काल रुकलाके बादे पानि पीबी, नहि तऽ अहाँके कहै छै सर्दी खांसी और बुखार होइके संभावना बढ़ि जाइत अछि। और एखन जेना हालचाल के क्रम मे हमसब अहाँके जानकारी हमरा सबके भेटल कि चेचक के प्रकोप सेहो बहुत ठाम बढ़ि रहल अछि, कनी सावधानी राखी, साफ सफाई के ध्यान रखनाइ बहुत बेसी जरूरी अछि। साफ सफाई अपन अगल बगल के हुए, साफ सफाई अपन घर के हुए, साफ सफाई अपन शरीर के हुए, साफ सफाई रहत तऽ बहुत रास बीमारी के हमसब ओनाए दूर कऽ लेब। और गर्मी के महीना मे तऽ और कनी साफ सफाई के ध्यान रखनाइ जरूरी भऽ जाइत अछि कि बहुत रास जर्म्स अहाँके ऊपर आक्रामक कऽ सकैत अछि, ताहि लऽ कऽ साफ सफाई के ध्यान रखैत। और एखन आब मौसम बदलि रहल अछि, आब एकरा गर्मी नहि, एखन आब हमसब अहाँके बरसात के मौसम कहियो, बरसात भऽ नहि रहल अछि से एकटा कमी अछि, मुदा एखन हमसब अहाँके बरसात के मौसम आबि चुकल छी। और एहि समय मे पहिले अहाँके पानि लागि जाइ छल सबठाम, तऽ पानि के निकासी बहुत बेसी जरूरी अछि, और खास कऽ के मच्छर पनपै छै तऽ ओकरा से सेहो हम अहाँ बचि के रही, और राति मे मच्छरदानी के प्रयोग निश्चित करी।
0: बिल्कुल, और अगर आसपास में गड्ढा है तो इसको भी हम कोशिश करें कि उस पानी को, उस गड्ढे को, पानी को हटवा दें या फिर उस गड्ढे को भर दें। कई बार क्या होता है ना कि अभी का जो मौसम है, इस मौसम में डेंगू का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी हम सोने जाते हैं और तो हम मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें, इस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि आज हम चर्चा करेंगे आज के युवा और रोजगार, तो आज का युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होता है। देश के विकास और प्रगति में युवा को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, इसीलिए यहाँ युवाओं के लिए रोजगार का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजगार न केवल व्यक्ति को आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाता है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाता है। वर्तमान समय में शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ है, इसके कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, स्टार्टअप, ऑनलाइन शिक्षा और जैसे क्षेत्रों की युवाओं को रोजगार के उनके अवसर मिल रहे हैं। आज के युवा नौकरियों के साथ साथ स्वरोजगार की भी ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं।
1: एकदम सही गप कहल पपीता आपने। अखन जो भारत में से 65% युवा अहाँ के जनसंख्या अछि, जे कोनो देशक लेल 35 साल से कम उम्र के जे जनसंख्या अछि युवा के, से कतौ न कतौ एकटा बहुत पैघ हमर सबके प्लस पॉइंट अछि, जाहिसँ हम देश आगू बढ़ि सकैत अछि। और गप करी रोजगार के, हम तऽ एकटा सिंपल आसान से गप बुझै छियै, आइ अगर अहाँके घर के पानि खराब भऽ जाय, अहाँके टेप खराब भऽ जाय, बिजली मे कोनो कमी आबि जाय, तऽ अहाँ भोर मे अगर अहाँ इलेक्ट्रीशियन के या प्लम्बर के कॉल करै छियनि, तऽ ओ अहाँके समय दै छथि साँझ मे कोलका, यानी हुनका लग एतेक बेसी काज छनि, हुनका लग एतेक बेसी काज छनि कि ओ अहाँके एखन तुरंत कॉल कयलाके बाद भऽ सकैए 2 घंटा 4 घंटा या एक दिन के बाद अहाँ लग आबि रहल छथि, यानी काज के कमी कतौ छै, ई बुझनाइ सबसे बेसी जरूरी अछि। हम अहाँ अगर घर मे बैस के सोचि लेब कि काज हमरा भेट जाय, तऽ ई नहि संभव अछि आइके समय मे। स्किल भेनाइ सबसे बेसी जरूरी भऽ गेल अछि, स्किल रहत तऽ काज के कमी नहि छै, स्किल नहि रहत तऽ हम अहाँ खाली बेरोजगारी के लेल कानब। ताहि दुआरे जिनका लग स्किल छनि, स्किल एखन देश विदेश मे जे देश तरक्की कऽ रहल अछि या जे देश विकसित अछि, कतौ न कतौ अपन स्किल के बल पर अछि, और भारत मे सेहो एहि पर जोर देल जा रहल अछि। एखन जेना बहुत रास गप हमसब करैत रही एखन कार्यक्रम मे कि स्टार्टअप केला के बाद से युवा अपन स्वरोजगार के दिशा मे आगू बढ़ि रहल छथि। और एकटा एखुनका सरकार सबके सबसे पैघ गप कहबन, जतय पहिले हमसब खाली नौकरी के दिशा में आगू बढ़ैत रही, घर परिवार में खाली नौकरी के महत्व लोग बुझे छलत, आब स्टार्टअप शब्द एकटा एहन शब्द आयल कि जेकरा लोग आब अहाँके नीक दृष्टि से देखे छथिन, लोग कतौ न कतौ बुझि रहल छथिन कि कोनो अहाँके नीक काज कऽ रहल छथि, ई अहाँके भविष्य बना रहल छथि। तऽ ई सरकार सबके देन छनि कि एकरा ई हिसाब से ग्लोबल अनलखिन कि आइ स्टार्टअप एकटा लोक सबके मोन के बढ़ा रहल छनि, और सब आदमी बुझि रहल छथिन कि ई काज कऽ रहल छथि, नीक करतथि, आगू बढ़तथि, और ओकर हुनकर महत्व भऽ रहल छनि। और जखने युवा के महत्व बढ़तनि कि ओ दिशा में आगू बढ़बे करता है, तो ना कार्यक्रम में से हमरा आगू दिशा में बढ़े।
0: हाँ, और आपने स्टार्टअप की बात की, तो ये मैं गांव-गांव में देख रही हूँ।

0: के स्टार्टअप की ओर सब बहुत आकर्षित हुए हैं और ये कहीं ना कहीं हर युवाओं के लिए बहुत अच्छी एक खबर है और वो उत्साह के साथ वो स्टार्टअप करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज के युवा ऊर्जा, प्रतिभा और नवचार से भरपूर है। आज के युवा केवल, जैसा कि आपने कहा, डिग्री प्राप्त करने पर ही ध्यान नहीं देते हैं बल्कि ये व्यवहारिक ज्ञान और कौशल विकसित करने पर भी जोर देते हैं, जैसे कंप्यूटर, संचार कौशल एंड भाषाएं तथा तकनीकी परीक्षा जैसी योग्यताएं रोजगार को ये बहुत सहायक होती है। और इस प्रकार आज के युवा ऊर्जा, प्रतिभा और नवचार के भरपूर होते हैं और अवसर मिलते ही अपना रोजगार शुरू कर देते हैं और देश के आर्थिक उन्नति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार अपना रोजगार शुरू भी करते हैं। साथ ही आत्मनिर्भर बनने के लिए दूसरे को भी प्रेरित करते, खुद तो हो ही रहे हैं और ऐसे में क्या छोटे छोटे गांव पे आप देखेंगे ना कि दूसरे को भी ये प्रेरित करते हैं कि तुम एक बार इसको शुरू करो और कई जगह ऐसा होता है। और रोजगार युक्त युवा ही सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र के आधार होते हैं
1: निश्चित तौर पर। और खास करके जखन स्टार्टअप के चर्चा के लो तो एक और बहुत पैघ गप एक कि लोग पहले कहते रहें कि पैसा नहीं है तो हम अपन व्यापार केना करब, मुदा ये स्टार्टअप के अला के बाद से और खास करके बहुत रास एहन स्कीम सब आबि गेल सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, जैसे बिना पैसा कहाँ रोजगार खो सकै छी। अगर हम स्टार्टअप के गप करी तो स्टार्टअप में स्टार्टअप इंडिया अहाँ के 10 लाख तक के किछ ग्रांट दैत अछि, ग्रांट यानी कि जे पैसा अहाँ के वापस नहीं करवाक अछि और खास कऽ के अहाँ के ई कतौ न कतौ अहाँ के आगू बढ़े के दिशा में ई बहुत पैघ एक टा कदम भऽ सकैत अछि। और स्टार्टअप बिहार के गप करी तो स्टार्टअप बिहार त में तो एहन व्यवस्था अछि कि अगर अहाँ कोनो आइडिया अछि अहाँ लग, कोनो अहाँ सोचि रहल छी काज हम ई कऽ सकै छी, तऽ बस वह आइडिया के बेस पर अहाँ अप्लाई कऽ दियौ स्टार्टअप बिहार के पोर्टल छै ताहि पर, और अहाँ के 4 लाख रुपया वह काल में भेट जाए। वो आइडिया अगर अहाँ के किछ शामिल भऽ जाइत अछि, बुझाइत अछि कि अहाँ के ई काज सफल भऽ सकैत अछि, तऽ 4 लाख रुपया बिहार सरकार दैत अछि और फिर ओकर बाद 6 लाख रुपया और अहाँ के भेटैत अछि। ई कतौ न कतौ 10 लाख रुपया कोनो काज के शुरू करै लए एखुनका समय में महत्वपूर्ण अछि, बहुत बेसी अछि। अगर अहाँ 10 लाख रुपया में अगर अहाँ सफल भऽ जाइ छी तऽ फिर 10 लाख से 10 करोड़ और अरब लगातार
0: अहाँ के बढ़ सकै छी। कि एक सीढ़ी तो आप चढ़िए, उसके बाद आप एक एक करके आप देखिए उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, उस सफलता तक पहुंच जाएंगे और साथ ही आप पहुंचेंगे अपने समाज और अपने देश को भी लेके जाएंगे। और कहीं ना कहीं जब हम एक कोई आशीष जी अच्छे काम करते हैं ना तो इससे हमारा समाज भी बहुत प्रभावित होता है और उसको देख के दूसरे लोग भी वो करते हैं। ये जो युवा है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि एक दूसरे को देख कर वो आगे बढ़ते हैं, तभी तो इतना आज आगे है हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा समाज। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम कोई भी चीज़ की एक कदम लें और देखिए ना कि अपने आप दूसरा कदम उठ जाता है। तो अवसर बहुत है और
1: खाली जरूरी है कि अवसर को हम सब चिन्ही और खाली किताबी कीड़ा नहीं बनके आए के समय में स्किल के पर अगर ध्यान देवे तो अहाँ के कोनो कमी नहीं रहत, अहाँ लग किछ रोजगार के कमी नहीं रहत और रोजगार दै वाला अहाँ सेहो बन सकै छी। तो एहि पर हम सब चर्चा आगू जारी रखब, ओना कार्यक्रम में एखन अपन श्रोता सबके फेर एकटा गीत सुनबै छी।
0: तो आइए सुनते हैं ये फिल्म संगीत।

0: हम सब के नायक किछे चर्चा करे ही कि कतौ न कतौ युवा जे छथि तखन देश के भविष्य गढ़े वाला होइ छथि और ओ अपन भविष्य तखने गढ़ सकै छथि जखन ओ अहाँके स्किल पर अपन ध्यान देथिन, क्याकि अबै वाला समय स्किल के छै, नवाचार के छै और नव तकनीक के संगे जे आगू बढ़त तिंकर छन। और आइ के समय में आब काज के कमी नहीं छै, खाली तकबाक अछि कि अहाँके अगल बगल में एहन कोन काज अछि जे अहाँ कऽ सकै छी, ओ काज करू तो फिर अहाँ अपन संगे संगे औरो व्यक्ति के ओहि काज में रोजगार दे सकै छी।
1: बिल्कुल, आपने जो कहा ना कि हमारे आसपास बहुत काम है, आप घर से, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि घर से ही शुरू कीजिए, तो एक बिजली का काम हो या प्लम्बर का काम हो, तो आपको ना कहीं मैं तो कहूँगी ना कि आपको वेट करना पड़ता है। उसका मतलब आपको 10 बार आप कॉल कीजिए तो वो यही शब्द निकालेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आपको 2 दिन रुकना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये काम का कोई कमी नहीं है। अपने समाज में ही देख लीजिए तो हमारे पास सिर्फ डिग्री ही ना हो, हमारा स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ना कि हर जगह रोजगार है, जहाँ देखो वहाँ रोजगार है, बस हमको उसको अपना प्रतिभा को बाहर लाना है
0: निश्चित तौर पर। और जखन अगर हम अहाँ बुझ जाए छी और सीख ले छी कि केना हम सब आगू बढ़ सकै छी, तो फिर अहाँके रोजगार के कोनो कमिये नहीं कतौ नजर अबैत अछि। अहाँ एक संगे अहाँ लग 10-12 तरह के काज अहाँके देखा पड़त और संगे देखाइए नहीं पड़त, अहाँ आन व्यक्ति के, आन युवा के सेहो प्रेरित कऽ सकै छियनि और ओ अपन के छै भविष्य बना सकै छथि।
1: बिल्कुल, और वही हम अगर हम बैंकिंग क्षेत्र पर GST का प्रभाव की बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल एवं एकत्रित बनाना था। GST का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों की तरह बैंकिंग क्षेत्र पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। बैंकिंग क्षेत्र देश में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसीलिए GST के लागू होने से इसकी कार्य प्रणाली, सेवाओं और ग्राहकों पर कई प्रकार को प्रभाव देखने को मिले हैं। दूसरी ओर GST की बैंकिंग क्षेत्र का कर व्यवस्था से अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया है, और पहले विभिन्न राज्यों में अलग अलग कर नियम होने के कारण बैंकों का कर अनुपालन में कठिनाइयां का सामना करना पड़ता था। GST के लागू होने के कारण पूरे देश में एक समान कर प्रणाली स्थापित हुआ है, जिससे कर प्रवर्तन आसान हुआ है और प्रशासनिक जटिलता कम हुई है।
0: निश्चित तौर पर GST कतौ न कतौ एक मकसदे छल कि पूरा देश में एकटा कर प्रणाली हुए और वह पर GST काज कर रहल अछि। और GST में बैंक सबके जे फायदा भेलनि कि ओ अपन ऑफिस के जे रेंट छनि, सॉफ्टवेयर छथि, स्टेशनरी पर देल गेल टैक्स के 50% तक वापस क्लेम कऽ सकै छथि, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के सुविधा हुनका देल गेलनि हँ, यानी ITC ओ लऽ सकै छथि, तऽ ओ पैसा हुनका वापस आबि जाइ छनि, जाहिसँ हिनकर जे लागत छनि से कम भऽ जाइ छनि। और लागत कम हेतनि तऽ ओ अहाँके ओ पैसा आन काजमे लगा सकै छथि, जाहिसँ कि जे बैंक अपने आपके सुदृढ़ कऽ पाबि रहल छथि। तऽ GST ई एकटा बहुत पैघ फायदा छै और पारदर्शी से भेलै हँ। रिपोर्टिंग और ऑडिट के काज कनि बढ़ल जरूर अछि, कियाकि जखने अहाँके कोनो काज कर रहत अहाँके पारदर्शी आनऽ पड़त, तऽ ओकरा सब चीजके सामने राखऽ पड़ैत अछि, मुदा ग्राहक सबके सेहो एहिसँ फायदा भेलनि हँ। लोकसब आब अपन अहाँके UPI नेट बैंकिंग जेहन डिजिटल जे तरीका अछि ताहि दिस बढ़ि रहल छथि।
1: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि GST के कारण डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन का भी प्रोत्साहन मिला है। कर प्रणाली के डिजिटलकरण के बैंकों के अपनी तकनीकी संरचना मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है, और इससे ग्राहकों को बेहतर और अधिक सुविधाजनक सेवाएं प्राप्त होने लगी है। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा डिजिटल भुगतान प्रणालियों

0: का उपयोग तेजी से बढ़ा है। जीएसटी का बैंकिंग क्षेत्र पर विस्तृत प्रभाव पड़ा है और एक ओर ग्राहकों के लिए कुछ बैंकिंग सेवाएं महंगी भी हुई है, वहीं दूसरी ओर व्यवस्था की भी जो कहा कि पारदर्शिता जो है वो एक रूपता और से बढ़ी है।
1: निश्चित तौर पर कम चार्ज, तेज सर्विस, और बैंक आप टेक्नोलॉजी पर बेसी निवेश कर रहा छत, ई कतौ न कतौ अबै वाला समय में सिस्टम का और मजबूत करत।
0: और क्यों ना हम अपने कार्यक्रम को भी मजबूत बनाए रखें।
1: तो जखन जखन हम मजबूत बनबे के गप करलौं तो समसामयिक जे घटना है तकर जानकारी कतौ न कतौ हमरा अहां के सेहो जानकारी दैत अछि और आगू बढ़े में सहायक सेहो होइत अछि। और जखन हम सब अहां के गप करैत रही आई युवा रोजगार के एकटा समाचार जे छै सब कोई के बुझनाय बहुत जरूरी अछि कि विदेश से जे वापस आबि रहल छथि हाई स्किल्ड भारतीय और एतौ अपन कंपनी खोल रहल छथि, तऽ कतौ कतौ न कतौ ई विदेश से जे युवा वापस आबि रहल छथि से रिसर्च लैब स्टार्टअप शुरू कऽ के सब कोई के नौकरी के संगे संगे देश के सशक्त सेहो बना रहल छथि। बिहार के में स्कूल सब से संबंधित एकटा समाचार जे अछि कि कतौ न कतौ काल्हि वहाँ पोह के स्थिति बनल छल कि मॉर्निंग स्कूल हैत कि डे के स्कूल हैत, तकरा शिक्षा विभाग अपन अहाँके नोटिस निकाल के ई क्लियर कऽ देलथि कि स्कूल सब में भीषण गर्मी के कारणे सरकारी स्कूल सब जे आइ से खुजि रहल अछि से आब 30 जून धरि मॉर्निंग में चलत, यानी कि भोरका स्कूल रहत। और अगला साल से बिहार के स्कूल कॉलेज में कोर्स में योग के सेहो शामिल कयल जायत। ई मुख्यमंत्री काल्हिखन योग दिवस कार्यक्रम के अवसर पर कहलथि है। और CBSE 12वीं कक्षा के पुनः मूल्यांकन के नतीजा सेहो जारी कऽ देल गेल अछि। और नीट UG के गप करी तऽ 551 टा शहर में 22 लाख विद्यार्थी NTA के पुनर्परीक्षा द के अपन भविष्य आगू बढ़बे के दिशा में आगू बढ़लत। और ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना से दुगुना भ गेल अछि। और गप करी क्रिकेट के तऽ 11 गेंद में 8 शतक जड़ि के वैभव सूर्यवंशी नवका विश्व रिकॉर्ड बना देलथ। 29 गेंद पर ओ 94 रन बनेलथ। श्रीलंका में वैभव सूर्यवंशी अपन ई कारनामा कैलथ है। और आई उत्तर पूर्व बिहार में वर्षा वज्रपात के संभावना व्यक्त कैल गेल अछि। बिहार में मॉनसून गतिविधि सक्रिय भेनाय शुरू भ रहल अछि, तऽ एकटा कनी नीक समाचार अछि कियाकि जे हिसाब से गर्मी अखन पड़ि रहल अछि ताहिमे लोक सबके मोन खराब सेहो बढ़ि रहल छनि।
0: बिल्कुल, और ये मौसम जब बारिश का समय आएगा, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है हमारे और आपके लिए। और एक अच्छी और खबर है कि हम अपने श्रोताओं को मनोरंजन की ओर लेकर चले और खुद भी मनोरंजन की दुनिया में चलते हैं और सुनवाते हैं ये फिल्म संगीत।

0: समय के संग चलय पड़ित और जे समय के संगे चले से अहाँ के सफल सेहो होइ छथि और सफले नहीं होइ छथि अपन अगल बगल के बहुत आदमी के सेहो सफल बनबै छथिन और तै दुआरे हम सब अहाँ के कहब कि अपन स्किल के बढ़ाओ और अपन स्किल के बढ़ाएब त अपन समाज अपन के छे अगल बगल के जे और युवा के संगे संगे अहाँ देश के सेहो सशक्त बनाएब।
1: बिल्कुल, और एक देख के ही दूसरा उससे का अनुपालन करके वो आगे बढ़ता

0: तो इसके लिए अगर एक बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे दो चार और लगते हैं। तो रोज़गार की ओर भी यही बात है, और रोज़गार की कमी नहीं है हमारे युवाओं के पास, और देख रहे हैं हम कि आज युवा हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमें बबीता को
1: और हमरा आशीष के दिया विदा, नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
5: प्रगति तखने भऽ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
6: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
7: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
1: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
8: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। कुछ ही पलों में हम सुनवाएंगे अपने दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से

0: भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं ब्रिगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुलनोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिस 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
4: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले

0: जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी है, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज से तुलना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तिसादी और दिफाई तौर पर मुअसर होने में एक फैसलाकुन उंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के यूजीसी नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। अमेरिका के नायब सदर जे डी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है। और मर्दों के हॉकी में FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तिसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उंसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तिसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: वजीर आजम ने यह राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस चिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोस शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
1: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
0: वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अलाक्वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीर आजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया

0: ने कोनो में चीता कमान व कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं, जिनमें से 49 चीते कोनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुजगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नजर रखने और उनकी ट्रैकिंग के निजाम के बारे में जानकारी दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबाद कारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कोनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मजीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: कॉन्फ्रेंस में सभी अरकान आज दुनिया को दरपेश सलामती के गैर रिवायती चैलेंजेस के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही वो कौमी सलामती को दरपेश खतरात की नौइयत पर बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और मसनू जहानत से पैदा होने वाले खतरात पर भी गौरखोज करेंगे। सभी रुकन ममालिक के कौमी सलामती के मुशीर और वफद के सरबराहान इंफॉर्मेशन और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप्स की हालिया मीटिंग के नतायज का जायजा भी लेंगे। भारत की सदारत का मरकजी मौजू लचक पजीरी, इख्तरा, बाहमी ताउन और पायदारी को फरोग देना है, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आवाम पर मरकूज विजन की अक्कासी होती है, जिसे 2025 की रियो समिट में पेश किया गया था। चीन ने तस्दीक की है कि उसके वजीर खारजा वांग ई इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए आज से यूजीसी नेट 2026 का इम्तिहान शुरू कराएगी। कौमी सतह की एहलियत का टेस्ट हर रोज दो शिफ्ट में इस माह की 30 तारीख तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी मोड में कराया जाएगा। यूजीसी नेट इम्तिहान उन उम्मीदवारों के लिए कराया जाएगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन और पीएचडी कोर्सेज के दाखिले के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिशमंद है। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इम्तिहान की सभी तफसीलात के पूरे ध्यान से तस्दीक करें। उसने कहा है कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से पहले अपने इम्तिहान की तारीख, शिफ्ट, वक्त और इम्तिहान के मरकज के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मजीद ये कि पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुकर्रर इम्तिहानात के मराकज का पहले से दौरा करें ताकि मकाम और दस्तयाब सहूलियात से वाकफियत हासिल की जा सके। इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान का सवालनामा इफ्शा हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा है कि नीट का इम्तिहान जामे सिक्योरिटी और निगरानी के तहत कामयाबी के साथ मुनक़िद कराया गया। उसने मजीद कहा कि तलबा के लिए इस तरह की गलत मालूमात जानबूझकर फैलाना एक संगीन जुर्म है। सीबीएसई ने 12वीं जमात से मुतालिक मामलात के तस्दीक नामे और दोबारा जांच के नताइज जारी करना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इन नताइज का ऐलान मरहलेवार किया जा रहा है, जिनमें से 87% से ज्यादा दरखास्तों के नताइज का ऐलान कल कर दिया गया। बाकी दरखास्तों के नताइज दीगर मरहलों में जाहिर कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि यह अमल जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। दरखास्त किस मरहले में है इसकी मालूमात results.digilocker.gov.in पर की जा सकती है। सीबीएसई ने तलबा को यकीन दिलाया है कि हर एक दरखास्त एक बड़े, शफाफ और करीबी नजर रखने वाले निजाम से गुजारी गई है। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अफवाहों या गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न दें और वो सही मालूमात के लिए सीबीएसई के सरकारी बयानात पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2026 के

0: पद्म इनामात सिविल अवार्ड्स की कल दूसरी तकरीब में अदा करेंगी। इस मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के हिस्से के तौर पर आपके लिए 15 खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
1: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
2: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी और वहां पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
4: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: आप इस गुफ्तगू का आज और कल 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन ऑफिशियल YouTube पर भी सुन सकते हैं। 19वां मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल मिफ 2026 कल शाम एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। मुंबई में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरे में बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के लिए पुरवकार गोल्डन कॉन्च एजाज से नवाजा गया। एक रिपोर्ट।
5: महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, इत्तला तो नशरियात की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी जनाब प्रभात और दीगर शख्सियात ने मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन फिल्मों को 18 एजाजात अता किए। बैन अलावामी मुकाबला जाती जुमरों में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए माया सॉन्ग को सिल्वर कॉन्च के एजाज से नवाजा गया, जबकि अंडर द स्नो को बेहतरीन मुख्तसर अफसानवी फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च एजाज से नवाजा गया। कौमी मुकाबले जाती जुमर में बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च का एजाज आर्म स्ट्रॉन्ग फ्रॉम अमंगलम कोविल स्ट्रीट को दिया गया, जबकि द लास्ट शेल्टर ने विकसित भारत वंदे मातरम के 150 साल भारत एट द रेट 2026 से मुतालिक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के लिए अवार्ड हासिल किया। मुंबई से अंकिता आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीका के नायब सदर जेरी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में खातिरखाह पेशरफ्त हुई है, जबकि स्विट्जरलैंड में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के मामलों से निपटने के लिए भी सीनियर वफूद की बातचीत हुई। जेरी वांस ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुजाकरातकारों के दरमियान बातचीत में मजीद पेशरफ्त का इम्कान है। अमरीका और ईरान के वफूद के दरमियान स्विट्जरलैंड के सियाहती मकाम बर्जन स्टॉक पर बंद कमरे में बातचीत शुरू की गई। मीटिंग से पहले नामनिगारों से बात करते हुए जेरी वांस ने कहा कि मुजाकरात के सबब पहले ही हौसलाकुन नताइज बरामद हुए हैं। मुजाकरात के दौरान इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों समेत इलाकाई सिक्योरिटी के मामलों के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खसूसी तवज्जो दी गई। मर्दों की हॉकी में भारत ने कल FIH प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। भारत की तरफ से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। कप्तान हार्दिक सिंह को उनकी बेहतरीन क्यादत और शानदार कारकर्दगी के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
6: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारतीय बहरिया में 3 जंगी जहाजों को शामिल किए जाने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार करदा 3 नए जंगी जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किए। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की, सलामती और खुशहाली सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। रोजनामा इंकलाब ने आलमी योमी योग से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, आलमी योगा डे पर सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत दिगर पार्टियों के लीडरों ने योगा में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी, योग ने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
0: और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने में एक फैसलाकुन उनसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया, उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के UGC नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। और अमरीकी सदर जेरी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त जारी है, वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है।

0: اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی پٹنہ ہے، کچھ ہی دیر بعد پرادیشک سماچار پرسارت ہوں گے۔
2: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
3: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
2: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 3,96,000 से अधिक प्रभावित किसानों को फसल क्षति की अनुदान राशि वितरित करेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, विलुप्त हो रही आम की प्रजातियों को बचाने के लिए जिलेवार विशेष मॉडल उद्यान विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। और मौसम विभाग ने आज अररिया, कटिहार, सुपौल और सीतामढ़ी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में 3,96,000 से अधिक किसानों को 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि वितरित करेंगे। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत वासंतिक रवि 2025-26 के तहत इस वर्ष मार्च में आए आंधी तूफान से हुई फसल क्षति के लिए दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में विलुप्त हो रही आम की प्रजातियों को बचाने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष मॉडल उद्यान विकसित किया जाएगा।

पटना स्थित बामेती में आयोजित 3 दिवसीय आम महोत्सव के समापन कार्यक्रम में श्री सिन्हा ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह मॉडल उद्यान निदेशालय के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। इस बीच आम महोत्सव में 3 दिन के दौरान 20 लाख से अधिक आम के फल और पौधों की बिक्री हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। यह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा दिवस से पहले अपनी परीक्षा तिथि पाली समय और अपने परीक्षा केंद्र की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को अपने आवंटित केंद्रों का पहले से दौरा करने की सलाह दी गई है ताकि वे स्थान और उपलब्ध सुविधाओं से परिचित हो सकें। नीट यूजी पुनर्परीक्षा करे सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। प्रदेश में कल आयोजित नीट पुनर्परीक्षा के दौरान 5 मेडिकल छात्रों समेत 24 लोगों को कदाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इधर लखीसराय में फर्जीवाड़े के मामले में 3 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ साइबर अपराध समन्वय केंद्र और अन्य एजेंसियों के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना जोन से कुल 11,400 विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए आवेदन किया था। इनमें से 9,420 विद्यार्थियों के अंकों में संशोधन किया गया है। सीबीएसई ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार बेटिकट पकड़े जाने वाले यात्रियों को अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं किसी पुरुष यात्री के महिलाओं के लिए आरक्षित बोगी या सीट पर अनाधिकृत रूप से सफर करते हुए पाए जाने पर उस पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे परिसर में फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। साथ ही नशे की हालत में यात्रा करने, अभद्र व्यवहार करने या रेल परिसर में अव्यवस्था फैलाने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से वैध टिकट के साथ ही यात्रा करने और नियमों का पालन करने की अपील की है। राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 12 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बुडको के एमडी अनिमेश कुमार पराशर को नगर विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं बिहार राज्य पथ विकास निगम के एमडी सचिव शीर्षत कपिल अशोक का तबादला करते हुए उन्हें कॉम्फेड के एमडी की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी कल से प्रदेश के सभी 1,420 मंडलों और 52 जिलों में बूथ स्तर पर डिजिटल प्रशिक्षण अभियान चलाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह प्रशिक्षण राज्य के 92,000 बूथों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यकर्ताओं को व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए 6 जुलाई तक चलाया जाएगा। भोजपुर जिले के

0: शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में इस मामले में शीर्ष अदालत से स्वतः संज्ञान लेने और मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुठभेड़ को न्याय हित में सही बताया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि परिवार के अनुसार भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उन्होंने सवाल उठाया कि मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने के बावजूद उसे बंदूक क्यों दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून के सक्रिय नहीं होने के चलते अब तक सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। उत्तर पूर्व भाग के जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं पटना, गया और सारण समेत दक्षिण पश्चिम बिहार के 16 जिलों में अब तक मानसून ने प्रवेश भी नहीं किया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पिछले 10 दिनों से मुजफ्फरपुर में रुका हुआ है। इसके कल से एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है। विभाग ने आज अररिया, कटिहार, सुपौल और सीतामढ़ी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। वहीं शेष स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा उष्ण लहर के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: हालांकि आज सुबह पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली और सारण समेत आसपास के जिलों में बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 41.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। छपरा का अधिकतम तापमान 41.5, डेहरी का 41.2 और पटना का अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस अवधि में पटना, छपरा, डेहरी और कैमूर में लू की स्थिति बनी रही। कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के कनहरिया गांव के पास वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना, सारण और शेखपुरा जिला प्रशासन ने 27 जून तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में 8वीं कक्षा तक पठन पाठन गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं भोजपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में 24 जून तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। प्रदेश में बाढ़ अवधि के दौरान तटबंधों के मरम्मत कार्य की निगरानी की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अभियंताओं की एक टीम का गठन किया है। विभागीय आदेश के अनुसार यह टीम न्यूनतम 10% बाढ़ संघर्षनात्मक कार्यों की औचक जांच करेगी। मुख्य अभियंता अनिवार्य रूप से जांच दल को सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं होने की स्थिति में संबंधित अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि आधार सेवाओं का लाभ विभाग के अंतर्गत संचालित अस्थायी आधार पंजीकरण केंद्रों से प्राप्त किया जा सकता है। विभाग ने लोगों से कहा है कि वे अधिकृत अस्थायी आधार पंजीकरण केंद्रों की जानकारी भवन पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। विभाग के अनुसार आधार सेवाओं से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी, शिकायत या समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1947 पर संपर्क कर सकते हैं। बेगूसराय जिले में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 5 नामजद अभियुक्तों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मनीष ने बताया कि मामले से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने मामले में चकिया थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। वहीं मधुबनी जिले के बेनीपट्टी के अधवारी में पिछले दिनों कोर्ट कमिश्नर के साथ हुई बदसलूकी के मामले में जिला पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने 6 दारोगा को निलंबित कर दिया है। ये सभी घटना के समय घटनास्थल पर प्रतिनियुक्त थे। रांची

0: आयोजित 12वीं रैंकिंग ओपन स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीते हैं। इनमें पटना जिले के स्केटर्स ने सबसे अधिक 16 पदक प्राप्त किए हैं। खान और भूतत्व विभाग ने अवैध मिट्टी खनन और भंडारण मामले में माल सलामी थाना क्षेत्र के शरीफगंज स्थित ईंट भट्टा संचालक पप्पू महतो और संजय महतो पर 53 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने दोनों संचालकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, नीट यूजी पुनर्परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश, लखीसराय में दूसरे के बदले परीक्षा देते 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 15 मीटर तक निर्माण पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद पथ निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। दैनिक जागरण ने खेल की खबर को लीड बनाते हुए लिखा है, 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़, वैभव ने बनाया कीर्तिमान। अखबार लिखता है, युवराज सिंह का 12 गेंदों पर अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड टूटा। दैनिक भास्कर लिखता है, जदयू में नया दौर, चेहरा नीतीश कुमार का, पार्टी का नेतृत्व बेटे निशांत करेंगे। आज अखबार और राष्ट्रीय सागर ने सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 3,96,000 से अधिक प्रभावित किसानों को फसल क्षति की अनुदान राशि वितरित करेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, विलुप्त हो रही आम की प्रजातियों को बचाने के लिए जिलेवार विशेष मॉडल उद्यान विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। और मौसम विभाग ने आज अररिया, कटिहार, सुपौल और सीतामढ़ी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: तुम नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
2: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
3: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
2: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
1: आकाशवाणी दरभंगा।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से।

बैठा है जर्रा जमीन का, और सहराओ एक करबलाओ बे जो बादे सबाओ चली, निखत लिए हुसैन की हरसू हवाओ चली, दरियाओ की समत कहते हुए ये सदाओ चली, मुख्तारे खुशको तर की खबर तुझको क्या चली, बहरे वजू जो आएंगे शब्बीर रू बरू, और बढ़ जाओगी खुदा की कसम तेरी आबरू। अब बोले फरस को रोक के सरवर बखस्ता जाओ, शुक्रे खुदा के मिल गया पैगाम में इम्तहान, आगे ना बढ़ाओ कदम रोक लो निशान, ये खत्ते जमीन है मेरे गम की दास्तां, रहता है कोई जिस तरह फिक्रे माश में, हम भी उसी तरह से थे इसकी तलाश में, उतरो मुसाफिरो यही अपना मुकाम है, ये नए नवा है करबला इसका भी नाम है, हम सब का ये तवील सफ़र अब तमाम है, इस जाओ मेरी रसाई खुदा का प्याम है, जहमत तलब ना और कोई काम चाहिए, शादाबगी के वास्ते आराम चाहिए, अरे कूच अब ना होगा और कहीं इस मुकाम से, अब मख्तल हुआ है खल्क यहाँ मेरे नाम से, मेरी ये मुंतजिर थी जमी भी दवाम से, हमने भी याद रखा दुआओ सलाम से, महरूस कर लिया है जो सहराओं की सदाओ ने, आबे बकाओ से इसको नवाजाओ है खुदाओ ने, ये अर्ज पाक है मेरी तकदीर का शरफ, आगोश कायनात में है दूसरी नजफ, ईसारो सब्र शुक्र है इस खाक का हदफ, इबरत से देखता है जमाना भी इस तरफ, साजिर प्याम हक का वो दश्ते किताल से, अरमान लेके बैठा हूँ पंजाब साल से, ये सरजमीन करबला पाक साफ है, इसका ज़मीन खुल्द बरी से मुजाफ है, इसका तवाफ बैत खुदा का तवाफ है, ओढ़े हुए ये चादर गम का गिलाफ है, रुए जमीन पर शेमुअल्ला मुकाम है, काबे की तरह इसका भी दुनिया में नाम है, और इसके मकी को रहमत खालिक नसीब है, इससे जो मुनसलिक है वो हक्का और नकीब है, इखलाओ के फाजिलाओ का नुमाया रकीब है, दुनिया और दीन दोनों में सच्चाओ हबीब है, पहचान मेरी होगी तने चाक चाक से, उठेंगे रोज़े हश्र इसी अर्ज़े पाक से, गलताओं इधर से फिक्र में शब्बीर नामदार, मसरूफ़ कार से उधर अब्बास ज़ीवक़ार, पर्दा खिंचा कनात का बांधा गया हिसार, हटके अलग खड़े हुए साए मेरा हवार, नागाह सब ने परचम खमदार को देखा, पैदल के साथ मजमे असवार को देखा, अब्बास ने कहा कोई दो गांव तो बढ़ो, क्या चाहते हैं ये ज़रा मालूम तो करो, इनकी नसरकशी से फसादात से डरो, जल्द आके इनकी सारी हकीकत मुझे कहो, जागीर एहतशाम नहीं रेगो रेत की, मंजूर कल्ब है ये जगह अहले बैत की, शामिल हैं अहले बैत में बिनते बतूल भी, उतरे हैं इस मुकाम पर आले रसूल भी, बच्चे ज़रा ज़रा से हैं मानिंदे फूल भी, खालिक की रहमतों का यह होगा नुजूल भी, अवाज का जमाव है वाजिब नहीं यहाँ, उतरे कहीं वो और मुनासिब नहीं यहाँ, लश्कर ने दी सदाओ कि ये हुक्मे अमीर है, हुक्मे अमीर गोया के हुक्मे अखीर है, अदना न जानिए इसे लश्कर कसीर है, और जंगो जदल में इनकी अदाव बेनज़ीर है, जंगल में इस जगह को ना हरगिज़ बसाओ ये, और दरियाओ से हट के आप कहीं और जाइए, और चारों तरफ से फौज के आमद की है खबर, मुमकिन नहीं है और किसी का यहाँ गुज़र, जिस फौज के किसी को ना कुछ आएगा नज़र, घोड़ों के सुन की टाप से कांपेगा दश्तो दर, बच्चों के साथ झेलेंगे क्यों मुश्किलात को, बेहतर है आप छोड़ दें नहरे फरात को, फौजों से कह जी

जाएगी हद बंदिए नहर। लश्कर में आज शिमर की आमद की है खबर, बांधेंगे अपने जिस्म पर सब नैज़ो तबर, चमकेंगे आफ्ताब में हथियार और सर बसर। ये हिकमत अमल की निशानी है रोकना, मकसद हमारे अमीर शाम का पानी है रोकना। और लश्कर की कान तक जो सदा यज़ाकब था, सातवें फलक पर भी अब्बास का गज़ब गजा जो शेर कांप गया, और दश्तो दार सब कब्जे पति निगाह तो त्योरी चढ़ी अजब परवास। रूह होने लगी जिस्मो जान से, और निकला चिंघारता हुआ शेर अपने मान से। और जैसे ही शेर का बढ़ा आगे जरा कदम, सरकश सिपाहियों में न बाकी रहा खशम। सहगम ने तोल के जो किया थे को अलम, घबरा गए ये देख के शाहिन शहे उमम। मख्फी न हौसला था जड़ी का इमाम से, अब्बास की हुसाम थी बाहर न्याम से। अहले हरम से कहने लगी ज़ैनब हज़ीं, भाई कहाँ है देख लो तन्हा तो वो नहीं। लर्जा है इस फसाद से पांव तले जमीं, यकजा रहे न कोई भी तन्हा रहे कहीं। घर पे हमारे खैर खुदाओ नबी करे, जो है जहां तलावत नादे अली करे। और फिजा ने ये बटोर के ज़ैनब को दी खबर, बीबी फसाद बरपा है नहरे फरात पर, मगरूर बदमिजाज।

रजब है। आ जाओ ए कहीं, शेर को गुस्सा तो गजब है। ज़ैनब पुकारने लगी रो रो के भाई को, कासिम से महजबी को शहे कर बलाई को, और कह दो ये बात इब्ने अली के फिदाई को, परदेश में रुला न जहरा की जाई को, गुर्बत में सब्र ज़ब्त का देखो मुकाम है, कुर्बान तुम बा भाई के गुस्सा हराम है। अब मसरूफ़ थी बहन जो इधर किलो काल में, अब्बा उस शेर की तड़प लपके जलाल में, अकबर के फर्क आ गया।

0: रखना हर वक्त मेरी बाली सकीना पे नजर।
1: हुसैन हुसैन
0: हुसैन
1: हुसैन
0: हुसैन
1: हुसैन
0: हुसैन हुसैन।
2: सामिन माह मुहर्रम की मुनासिबत से आप सुन रहे थे नौहा। नौहा खां थे जनाब सैयद दिलबर हुसैन। अब पेश खिदमत है महफिल सुखन स्टूडियो मुशायरा। आज की महफिल सुखन में जो शोराए कराम तशरीफ़ फरमा हैं उनके असमाए गिरामी हैं जनाब फिरदौस गयावी, जनाब कलीम अख्तर, जनाब शौकत सबा कैफी और निज़ामत है मोहम्मद आलम की। आपकी समातों के हवाले
3: सामीन, आज हमने महफिल सुखन मुनाकिद किया है। इसमें मशहूर व मारूफ शोराए कराम तशरीफ़ फरमा है, जिनमें जनाब फिरदौस गयावी, जनाब शौकत सबा कैफी, जनाब कलीम अख्तर और निज़ामत कर रहे हैं मोहम्मद आलम। तो सबसे पहले हम के इस शेर के साथ, नहीं है इब्तिदा तेरी नहीं है इंतहा तेरी, नहीं है इब्तिदा तेरी नहीं है इंतहा तेरी, इबादत कर रहे हैं रोज़ व शब अर्ज़ो समा तेरी। तो हम के इस शेर के बाद अब बाज़ाब्ता महफिल सुखन का आगाज़ कर रहे हैं इस शेर के साथ कि ये ज़ुल्फ़ बरदोश कौन आया, ये किसकी आहट से गुल खिले हैं। ये ज़ुल्फ़ बरदोश कौन आया, ये किसकी आहट से गुल खिले हैं, महक रही है फ़िज़ाए हस्ती तमाम आलम बहार सा है। तो इसी शेर के साथ हम दावत सुखन दे रहे हैं जनाब कलीम अख्तर साहब को अपने अशार से नवाजे।
4: गज़ल का मतला समात कीजिए।
5: इरशाद।
4: तन्हाइयों की रात है।
3: वाह।
4: तन्हाइयों की रात है, कैसी गज़ल कहूँ।
3: वाह वाह
5: वाह। तन्हाइयों की रात,
4: तन्हाइयों की रात है, कैसी गज़ल कहूँ।

0: उजड़ी सी कायनात है,
1: कैसी
2: वाह वाह क्या वा, वा, क्या कहना।
0: तन्हाइयों की रात है कैसी गजल कहूँ, उजड़ी सी कायनात है कैसी गजल कहूँ। और हुस्न मतलब समाज फरमाइए
2: इरशाद
0: के मौजे तफक्कुरात है कैसी गजल कहूँ, मौजे तफक्कुरात है कैसी गजल कहूँ, गिरदाब में हयात है
2: कैसी गजल। वाह वाह बहुत बहुत
0: शुक्रिया। मौजे तफक्कुरात है कैसी गजल कहूँ,
1: गिरदाब
0: में हयात है कैसी गजल कहूँ। और ये शे मुलाजा कीजिए कि मैं तो असीरे हुस्न हूँ, मुमकिन नहीं नजात।
3: मैं तो
0: असीरे हुस्न हूँ, मुमकिन नहीं नजात। जुल्फे तखयुलात है
3: कैसी,
2: वाह वाह वाह क्या कहने।
0: शुक्रिया। मैं तो असीरे हुस्न हूँ, मुमकिन नहीं नजात। जुल्फे तखयुलात है कैसी गजल कहूँ। और ये शेर कि ऐसी सहर भी क्या कि कभी शाम ही न हो।
1: वाह
0: जी। हुस्न मतला समात फरमाइए
2: इरशाद हो।
0: मौजे तफक्कुरात है कैसी गजल कहूँ, मौजे तफक्कुरात है
1: कैसी
0: गजल कहूँ,
1: गिरदाब
0: में हयात है कैसी गजल कहूँ। और ये शेर कि मैं तो असीरे हुस्न हूँ, मुमकिन नहीं नजात। मैं तो असीरे हुस्न हूँ, मुमकिन नहीं नजात। जुल्फे तखयुलात है कैसी गजल कहूँ। और ये शेर
2: इरशाद
0: के ऐसी सहर भी क्या कि कभी शाम ही न हो। ऐसी सहर भी क्या कि कभी शाम ही न हो। तर के ताल्लुकात है कैसी गजल। शुक्रिया। ऐसी सहर भी क्या कि कभी शाम ही न हो। तर के ताल्लुकात है कैसी गजल कहूँ। और आखिरी से मुलाजा फरमाइए
2: इरशाद
0: के माना के उसके प्यार में पागल नहीं हूँ मैं। माना के उसके प्यार में पागल नहीं हूँ मैं। फिर भी तड़पती रात है कैसी गजल कहूँ। माना कि उसके प्यार में पागल नहीं हूँ मैं। फिर भी तड़पती रात है कैसी गजल कहूँ। और मक्ता समात फरमाइए उल्फत तो मैंने की कभी सर खम नहीं किया। उल्फत तो मैंने की
1: कभी
0: सर खम नहीं किया। अख्तर आना की बात है कैसी गजल।
2: वाह वाह क्या कहने।
3: उल्फत
0: तो मैंने की कभी सर खम नहीं किया। अख्तर अना की बात है कैसी गजल कहूँ। तन्हाइयों की रात है कैसी गजल कहूँ। उजड़ी सी कायनात है कैसी गजल कहूँ।
2: वाह वाह बहुत। और
0: दूसरी गजल का मतलब समाज फरमाइए
2: इरशाद।
0: तेज पुरवाइयों में उतरो तो, तेज पुरवाइयों में उतरो तो, आज की आंधियों में उतरो तो। तेज पुरवाइयों में उतरो तो, आज की आंधियों में उतरो तो। और दूसरा मतलब दिल की अंगनाइयों में उतरो तो, दिल की अंगनाइयों में उतरो तो, घर की पिन्हाइयों में उतरो तो।
2: शुक्रिया।
0: दिल की अंगनाइयों में उतरो तो, घर की पिन्हाइयों में उतरो तो। और ये शेर कि रोशनी तीरगी से फूटेगी, रोशनी तीरगी से फूटेगी, शब की तारीकियों में उतरो तो। शब की तारीकियों में उतरो तो। और ये शेर कि शहर की वादियों में क्यों गुम हो, शहर की वादियों में क्यों गुम हो। दश्त की वादियों में उतरो तो, दश्त की वादियों में उतरो तो।
3: एक बार और जमत कीजिए।
0: शहर की वादियों में क्यों गुम हो, शहर की वादियों में क्यों गुम हो। दश्त की वादियों में उतरो।

0: और ये शेर खास तो सुमराजा कीजिए कि नहर दरिया नहीं समुंदर है, नहर दरिया नहीं समुंदर है, दिल की गहराई उतरो तो।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: नहर दरिया नहीं समुंदर है, दिल की गहराइयों में उतरो तो। और आखिरी शेर के चांद की दे रहे हो क्यों तमसील,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: चांद की दे रहे हो क्यों तमसील, अपनी तन्हाइयों में उतरो तो।
1: वाह वाह वाह।
0: चांद की दे रहे हो क्यों तमसील, अपनी तन्हाइयों में उतरो तो, तेज पुरवाइयों में उतरो तो, आज की आंधियों में उतरो तो।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे जनाब कलीम अख्तर आपसे मुखातिब। अब हम इस शेर के साथ दावत सुखन देते हैं जनाब शौकत सबा कैफी को। चाँद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है, चाँद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है। इसी शेर के साथ हम दावत सुखन दे रहे हैं जनाब शौकत सबा कैफी को।
2: देखिए मतला बहुत आम फहम है, तुम न मानो तो ये हमाकत है।
1: अरे वाह।
3: तुम न मानो तो ये हमाकत
2: है, तुम न मानो तो ये हमाकत है, बंद मुट्ठी में भी करामत है।
1: वाह वाह, क्या कहना है।
2: तुम न मानो तो ये हमाकत है, बंद मुट्ठी में भी करामत है। और हुस्न मतला देखिए कि आंख भर आना गम की जिल्लत है।
1: वाह
3: आंख भर आना गम की,
2: आंख
1: भर आना
2: गम की जिल्लत है, मुस्कुराना ही मेरी आदत है।
1: वाह वाह, क्या कहना है।
2: आंख भर आना गम की जिल्लत है, मुस्कुराना ही मेरी आदत है। और शेर देखिए के मौत से पहले मर गया होता,
3: मौत से पहले मर गया,
0: मौत से पहले मर गया होता,
2: मौत से पहले मर गया होता, जिंदगी है यही गनीमत।
1: अच्छा,
2: मौत से पहले मर गया होता, जिंदगी है यही गनीमत है। हाल अब मेरा पूछते क्या हो,
3: हाल अब मेरा पूछते क्या हो,
2: हाल अब मेरा पूछते क्या हो, बस समझ लो खुदा की रहमत।
1: अरे वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने।
2: हाल अब मेरा पूछते क्या हो,
3: बस समझ लो
2: खुदा की रहमत है। और अपने रिश्ते भी गैर लगते हैं, अपने रिश्ते भी गैर लगते हैं, बदनसीबी भी एक लानत है। अपने रिश्ते भी गैर लगते हैं, बदनसीबी भी एक लानत है। और उम्र भर जो बदल नहीं सकती, उम्र भर जो
1: बदल नहीं सकती
2: आदमी की कुछ ऐसी फितरत।
1: वाह वाह वाह, क्या कहना है।
2: उम्र भर जो बदल नहीं सकती आदमी की कुछ ऐसी फितरत है। और कौन किसका ख्याल करता है। कौन किसका ख्याल करता है, किसको दुनिया में इतनी फुर्सत है।
3: अच्छा है,
2: कौन
3: सहले मंत्रा में
2: किसका ख्याल करता है, किसको दुनिया में इतनी फुर्सत है। और जिंदगी ख्वाब ख्वाब है अपनी, जिंदगी आखिरी शेर है, जिंदगी ख्वाब ख्वाब है अपनी, जो हकीकत है वो हकीकत है।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: जिंदगी ख्वाब ख्वाब है अपनी, जो हकीकत है वो हकीकत है। और मकता देखिए कि मुझ पे कीचड़ उछालता है वही, मुझ पे कीचड़ उछालता है वही, जिसको मुझसे सबा अकीदत है।
1: अरे वाह वाह वाह, सही।
2: जिससे को मुझसे सबा अकीदत है, तुम ना मानो तो ये हमाकत है, बंद मुट्ठी में भी करामत है।
1: बहुत।
2: और ये भी बहुत हल्की फुल्की चीज़ है, देख लीजिए कि कुदरत मतला है कि कुदरत का मतला ही ज़्यादा मिलेगा
1: जी,
2: शेर कम।

0: में मिलेंगे। कुदरत का है हसीन एक इनाम जिंदगी, कुदरत का है हसीन एक इनाम जिंदगी, और यूं ही गुजर न जाए ये नाकाम जिंदगी, यूं ही गुजर न जाए ये नाकाम जिंदगी। और फिर देखिए कि होती है हर कदम पे जो नाकाम जिंदगी, उसने मतलब होती है हर कदम पे जो नाकाम जिंदगी, आती है जिंदगी में वही काम जिंदगी। होती है हर कदम पर जो नाकाम जिंदगी, आती है जिंदगी में वही
1: काम
0: जिंदगी। और बस एक मौत ही तो है अंजाम जिंदगी,
1: सही,
0: बस एक मौत ही तो है अंजाम जिंदगी, ना जाने कब हो जाए तेरी शाम जिंदगी।
2: वाह वाह वाह, क्या कहने,
0: ना जाने कब हो जाए तेरी शाम जिंदगी।

0: कि होती है हर कदम पे जो नाकाम जिंदगी।
1: वाह
2: जी जी,
0: होती है मतलब होती है हर कदम पे जो नाकाम जिंदगी, आती है जिंदगी में वही काम जिंदगी। होती है हर कदम पर जो नाकाम जिंदगी, आती है जिंदगी में वही
1: काम
0: जिंदगी। और बस एक मौत ही तो है अंजाम जिंदगी।
1: सही,
0: बस एक मौत ही तो है अंजाम जिंदगी, ना जाने कब हो जाए तेरी शाम जिंदगी।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
0: ना जाने कब हो जाए तेरी शाम
1: जिंदगी,
0: और इस के मरमर के जिए जाने का है नाम जिंदगी।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: क्या बात।
1: बहुत
0: मरमर के जिए जाने का
1: है नाम जिंदगी,
0: है नाम जिंदगी, और जो जीते जी मर जाए किस काम जिंदगी।
1: वाह वाह वाह,
2: अच्छा वाह।
0: और आगे देखिए कि आ जाए दूसरों के जो काम जिंदगी।
1: वाह वाह
2: वाह, अच्छा।
0: आ जाए दूसरों के जो काम जिंदगी, बस ये समझ लो है यही इनाम जिंदगी।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: बस ये समझ लो है यही इनाम जिंदगी। और अब हम लोग शेर पर आ जाएं, कुछ मतले को दरगुजर कर रहे हैं कि चंद रोजा जिंदगी पना इतराइए हुजूर।
1: वाह वाह,
0: चंद रोजा जिंदगी पे ना इतराइए हुजूर, आती है लेके मौत का पैगाम जिंदगी।
1: वाह वाह वाह, क्या कहना।
0: चंद रोजा
1: जिंदगी
0: पे ना इतराइए हुजूर, आती है लेके मौत का पैगाम जिंदगी। चंद रोजा जिंदगी पे ना इतराइए हुजूर, आती है लेके मौत का पैगाम जिंदगी। आती है लेके मौत का पैगाम जिंदगी। और नफरत अदावत से दूर रह, नफरत फरेब बोग अदावत से दूर रह, इन आदतों से होती है बदनाम जिंदगी। नफरत फरेब बोग अदावत से दूर रह, इन आदतों से होती है बदनाम जिंदगी। और आगे शेर देखिए कि आते हैं लोग बस वही इसके फरेब में, आते हैं लोग बस वही तेरे फरेब में तुझको आते हैं लोग बस वही तेरे फरेब में तुझको समझ रहे हैं जो गुलफाम जिंदगी।
1: वाह वाह,
0: तुझको समझ रहे हैं जो गुलफाम जिंदगी, और हैं खुश नसीब लोग जो आगोश कर्ब में, हैं खुश नसीब लोग जो आगोश कर्ब में अपनी गुजारते हैं एक आम जिंदगी।
1: वाह वाह, جناب کلیم اختر جناب شبہ سبا کیفی اور نظام الدین محمد عالم کی، اسی کے ساتھ آج اردو پرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت۔
3: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر، یہ آکاش وانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ آنند لیجیے فلم سنگیت کا۔

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। अगला गीत सुनिए फिल्म नैया से यशुदास के स्वर में। गीत एवं संगीत रविंद्र जैन का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
1: एनपीएस पेंशन?
0: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
1: बुढ़ापा सुरक्षित?
0: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।
2: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म मनमौजी का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। बोल राजेंद्र कृष्ण के और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंगा ये गीत, संगीत निर्देशन आर डी वर्मन का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर एवं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था इज्जत। अब सुनिए फिल्म फर्ज का ये गीत मुकेश एवं लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म फर्ज के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं विद्यापति गीत। अभी आपने सुना सूर्य नारायण पोद्दार को, अब सुनिए राम कुमार मल्लिक से ये गीत।

राम कुमार मल्लिक को अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं विद्यापति गीतों का कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में।

कुंज बिहारी मिश्र के इसी गीत के साथ विद्यापति गीतों का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं पंडित जसराज। आइए इनसे सुनते हैं कबीर भजन, राग शुद्ध वराड़ी में।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए,

0: भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोता, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म अखंडा से। गायक कलाकार हैं सपना पाठक, संगीत दिया है एस थमन ने और गीत रचना किशन पैवाल की है।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
0: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
2: संदेश पूर्व आप सुन रहे थे रवि बसरूर के संगीत निर्देशन में गाए गीत फिल्म भोला से। गीतकार थे इरशाद कामिल। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गदर 2 से।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गदर टू का यह गीत, विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और सहनाज अख्तर की आवाज में। गीत रचना शहीद कादरी की थी, संगीत निर्देशन मिथुन ने किया है।

इसी गीत के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जैसा कि आप जानती हैं, आज सोमवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में, जहां आनंद लेंगे कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का। और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्षों की प्रमुख योजनाओं और महिलाओं, गरीबों, किसानों तथा युवाओं के जीवन पर पड़े प्रभावों की। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने 12 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को रेखांकित किया है। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, आवास, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।

0: वहीं जनधन योजना ने महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर घर शौचालय निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा मिला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। लाखों परिवारों को महंगे इलाज का लाभ मिला। आवास क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही नल जल मिशन के माध्यम से घरों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य किया गया। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने खेती को और अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाने का प्रयास किया। सरकार के अनुसार करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और बीमा लाभ प्राप्त हुए हैं। अब बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। इन 12 वर्षों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था, सड़क, रेल, हवाई अड्डों और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के विस्तार, बैंकिंग सुविधाओं और उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास भी उल्लेखनीय रहे हैं। मानो केंद्र सरकार के 12 वर्षों की यात्रा में अनेक योजनाएं शुरू हुई जिनका उद्देश्य गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग को सशक्त बनाना है। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तब और बढ़ेगा जब प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे और समाज जागरूक होकर इनका प्रयोग करे। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी होंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मायसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
0: आई बहनों, आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और वार्ताकार हैं आरती कुमारी।

नमस्कार, मैं आरती। महिलाएं किसी भी समाज का आधार स्तंभ होती है। वे न केवल परिवार का पालन पोषण करती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश अक्सर महिलाएं अपने जिम्मेदारी के निर्वहन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देती है। ये प्रवृत्ति न केवल उनके वर्तमान जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है बल्कि भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसे प्राथमिकता भी दें। महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल एक बहुआयामी विषय है जिसमें शारीरिक,

0: मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का भी शामिल किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो एक संतुलित आहार, पौष्टिक आहार इसका महत्वपूर्ण आधार है। महिलाओं को अपने भोजन में फल, सब्जियां, अनारदाने और स्वस्थ वसा को शामिल करना चाहिए। प्रसंस्कृत भोजन और जंक फूड और अत्यधिक चीनी वाले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है। नियमित व्यायाम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम महिलाओं को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करना चाहिए, जैसे कि तेज चलना, योग करना, कसरत करना। और हाँ, व्यायाम न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि तनाव को भी कम करता है। साथ ही पर्याप्त नींद भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि अच्छा भोजन जरूरी है और व्यायाम जरूरी है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद जरूर ले, क्योंकि नींद की कमी से थकान और चिड़चिड़ापन वगैरह भी हो सकती है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: मानो गर्मी बहुत ज्यादा है, ये मौसम अपने साथ जहां आम, लीची, तरबूज और छुट्टियों की खुशियां लेकर आता है, वहीं तेज धूप, लू और स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियां भी लेकर आता है। गर्मी के मौसम में हर मौसम से ज्यादा पानी पीना जरूरी होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे पानी और आवश्यक लवणों की कमी हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी में सादा पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी और मौसमी फलों का सेवन शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इस मौसम में हल्के सूती आरामदायक कपड़े पहनने से घर से बाहर कम निकलें और छाते का प्रयोग जरूर करें, जहां तक हो सके सर को ढक कर रखें। इसके साथ ही ताजा और स्वच्छ भोजन का सेवन करें और बासी भोजन ना करें। कई बार ऐसे भोजन जो हैं वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकते हैं। तो बहनों, गर्मी केवल चुनौतियां ही नहीं लाती बल्कि प्रकृति की अनेक सौगातें भी लेकर आती है। आम फलों का राजा कहलाता है और इस मौसम में इसकी मिठास लोगों का मन मोह लेती है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जामुन जैसे फल शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ साथ पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां नए अनुभव और सीखने का अवसर लेकर आती हैं। तो बहनों, गर्मी का मौसम जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ी सी सावधानी और सही खानपान अपनाकर हम इस मौसम का आनंद भी ले सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी होती रहेंगी, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परूणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। आज इसमें हम जानेंगे मूंग के दाल की इडली बनाने की विधि। इडली तो बहुत तरह की आपने बनाई होगी, चावल की, दाल की मिलाकर या फिर सूजी की, लेकिन चलिए आज कुछ नया हम लोग प्रयोग करते हैं और बनाते हैं मूंग के दाल की इडली। बहनों, दक्षिण भारतीय खाने की बात हो और इडली का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इसमें सारे भारत के लोग बहुत पसंद करते हैं। आमतौर पर घरों में चावल, सूजी, उड़द की दाल का इस्तेमाल करके इडली बनाई जाती है। लेकिन बहनों, अगर आप इस पारंपरिक स्वाद में एक टेस्टी ट्विस्ट देना चाहती हैं तो ये मूंग दाल की इडली आपको एक नया स्वाद देगी और ये स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है और ये प्रोटीन सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं हमें ये मूंग के दाल की इडली बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उसे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है धुली हुई मूंग की दाल 1 कप, जिसे कि हमें पूरी रात भिगो कर रखना है। अगर रात में आप भिगोना भूल जाती हैं तो बनाने से पहले आपको कम से कम 3 से 4 घंटे तक इसे भिगो कर रख देना है। साथ ही इसके लिए जो चाहिए वो है 1/2 कप दही, सूजी 1/4 कप, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, गाजर 1/4 चम्मच बारीक कद्दूकस की हुई, हरी धनिया की पत्ती 2 चम्मच बारीक कटी हुई, इनो 1 छोटा चम्मच, अगर इनो घर में ना हो तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और नमक स्वाद के अनुसार। मैंने नमक कोशिश करेंगी कि कम ही डालेंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घोल में नमक जाता है और इनो पहले से होता है तो नमक तेज़ हो जाता है और लोगों को तेज़ नमक पसंद नहीं होता, तो इसलिए कोशिश करें कि नमक हल्का ही डालें। अब इसमें तड़का लगाने के लिए जो हमें चाहिए वो है 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच उड़द की दाल, 7 से 8 कड़ी के पत्ते और 1 चुटकी हींग। तो चलिए अब बनाते हैं हम। तो इसे बनाने के लिए मूंग की दाल को रात में 7 से 8 घंटे के लिए सबसे पहले भिगोकर रख देना है और फिर सुबह इसे अच्छे से धो लें। कम से कम 3 से 4 पानी तक आप मूंग की दाल को धोएं। कई बार ऐसा होता है कि अगर अच्छे से दाल नहीं धुली हुई होती तो उसमें कुछ महक सी आ जाती है और वो स्वाद खराब लगता है। फिर धोने के बाद आप इसे एक मिक्सर में डालें और इसे अच्छे से पीसें। पीसते टाइम थोड़ा सा इसमें दही डाल दें, जो कि थोड़ा खारा होता है, थोड़ा सा खट्टापन इसमें लेकर के आता है। फिर इसमें अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता और नमक डालकर बिना पानी के पीसकर महीन पेस्ट बना लें। पेस्ट आप एक बार छूकर देख लेंगी कि वो दरदरा ना हो। इडली का मिक्स इससे तैयार हो जाएगा। अब इसमें नमक डालें, इनो डालें, चाहे तो घिसी हुई गाजर और हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकती हैं, और यदि घर में उपलब्ध नहीं है तो परेशान नहीं होना है, आप इन दोनों चीज़ों को छोड़ भी सकती हैं। फिर इसमें तेल गर्म करके राई का तड़का लगाना है, और राई के तड़के के लिए जो हमने पहले आपको सामग्री बताई थी, 1 चम्मच राई, उड़द की दाल, कड़ी पत्ता और 1 चुटकी हींग, आप इन सभी को गर्म तेल में डालें और ऊपर से छौंक लगा दें। अब इसे अच्छी तरह से फेंट के मिला लें और इडली फर्मे में आप थोड़ा सा घी लगाएं और थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट डालें। पेस्ट डालने के बाद इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट तक आप पकाएं। जब आप कुकर खोलेंगी या आप अगर इसे ओवन में बना रही हैं जब उसे खोलेंगी तो आप देखेंगी कि ये बहुत ही मुलायम और फूली फूली सी इडली बनकर तैयार हो गई है। तो बहनों, इसे आप चाहें तो चटनी के साथ खा सकती हैं। अगर आपको सांभर पसंद है तो आप सांभर बनाकर रख लें और आप इसे सांभर के साथ खाएं, या फिर आप इसे सॉस के साथ भी खा सकती हैं। और एक और तरीका है कि आप इसको बनाने के बाद ऊपर से भी तड़का लगा सकती हैं राई का। तो जैसे भी पसंद है, चूंकि दक्षिण भारतीय व्यंजन है, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है और थोड़ा सा नमकीन होता है। तो चलिए बहनों, अगर आप भी चाहें तो अपनी व्यंजन रेसिपीज़, अपने सुझाव हमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी लिखकर भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwani.darbhanga@gmail.com। तो बहनों, ये तो थी मूंग के दाल से इडली बनाने की विधि। आप सांभर जो बनाती हैं उसमें एक विशेष चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सांभर में तो हम लोग दाल डालते हैं, बहुत सारी सब्जियां डालते हैं और सांभर का मसाला डालते हैं। एक बार कोशिश करें कि बाजार से खरीदे हुए सांभर के मसाले की जगह हम लोग घर के बनाए हुए

सांभर मसाले से भी सांभर बहुत स्वादिष्ट बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि हमें जीरा, मेथी, सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, लौंग, इन सभी चीज़ों को सूखी कढ़ाई में भूंज लेना है और भूंजने के बाद इसे थोड़ा सा, बहुत बारीक तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा दरदरा इसे आप मिक्सी में पीस लें। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे सिल पे पीसें, क्योंकि आजकल तो लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते सिल को, हर घर में मिक्सी है, आसान चीज़ है और कई बार लोग ऐसा होता है कि उसे कूट लेते हैं, तो कूटना नहीं है क्योंकि बेहद दरदरा हो जाता है इससे। तो आप सील पे पीसें, सील का स्वाद बिल्कुल अलग होता है। हमारी जो परंपरा है पूर्वजों की बनाई हुई, वो एक खास परंपरा है। एक बार कोशिश करें इसे आजमाने की, तो जब उससे आप सांभर बनाएंगी तो आप देखेंगे कि जो बाजार के मसालों से हम लोग सांभर बनाते हैं टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही स्वादिष्ट वो बनता है। कभी सांभर में आप थोड़ा सा गरी घस करके डालें तो सांभर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। इमली की जगह नींबू का प्रयोग करें, थोड़ा सा टमाटर डाल दें, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, चीज़ें वही हैं, खाने की मात्रा वही रहती है पर स्वाद बदल जाता है और स्वाद बदला हुआ बच्चों को भी अच्छा लगता है और खासकर बुजुर्गों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है बहनों, चलिए आज के लिए इतनी ही बातें बहुत सारी हो गई, लेकिन इन बातों के साथ साथ आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दीवाना से। आवाज है कुमार शानू, साधना सरगम की, और बोल है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार।

तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। जी हाँ बहनों, पूरे हफ्ते हम लोग आपका इंतज़ार करते हैं। तो चलिए दीवाना फिल्म के इसी खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए विदा। श्वेता को नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज

0: जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में।

श्रोताओं, 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे दिन के 1:15 पर। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे 2:10 पर।

2:30 पर पुनः आप आने लेंगे फिल्मी गीतों का। दिन के 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत। संध्या काल 5 बजे आप सुनेंगे युवा को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। युववाणी के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। संध्या काल में फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे 5:40 पर। साथ ही आप सुनेंगे 6:10 पर विद्यापति गीतों को।

6:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम गांव घर। गांव घर में श्रोता सुनेंगे अनुभव के चश्मा सॉन्ग, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। किसान भाइयों का कार्यक्रम आप सुन

रखेंगे संध्या 7 बजे खेती गृहस्थी। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 7:52 पर मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगर हार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर।

रात्रि काल आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी 10 बजे। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत हेमंत कुमार की आवाज में।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत हेमंत कुमार उनके साथियों की आवाज में।
1: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहि सँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: श्रोताओ, अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से।

महेंद्र कपूर को भी आप सुन रहे थे फिल्म हमराज में। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गुमराह से। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में यह गीत। गीत रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत दिया है रवि ने।

आर डी बर्मन में के संगीत निर्देशन में गाए इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म मासूम से। गायक कलाकार थी लता मंगेशकर, गीत गुलजार के थे। श्रोता, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड से। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

ही लता मंगेशकर गीत के बोल लिखे हैं भरत व्यास ने और इस गीत को अपने धुनों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे इम्तिहान फिल्म का यह गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सती सावित्री से। गायक कलाकार

तछुम तछुम तक तक लाते इसके था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैहारी जाजारी।

गुलजार के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म खूबसूरत से। आवाजें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। संगीत निर्देशन आरडी बर्मन ने किया था। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कोहिनूर से। गीत रचना शकील बदायूं ने की है और संगीत बद किया है नौशाद ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर यहीं समाप्त होता है। अब समय हो चला है प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों का।
1: वाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में 3,96,000 से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि अंतरित की है। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत वासंतिक रबी 2025-26 के तहत इस वर्ष मार्च महीने में आए आंधी तूफान से हुई फसल क्षति के लिए दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत 13 जिलों के प्रभावित किसानों को अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि और आवेदन प्राप्त होने पर सत्यापन के बाद उन किसानों को भी अनुदान राशि दी जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण विकास योजनाओं को तत्परता से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर जिले के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वो रजिस्ट्रार के समक्ष इस मामले का उल्लेख करे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। याचिका में मुठभेड़ की घटना की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई है। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड संख्या 10 में कल रात एक श्राद्ध कार्यक्रम में भोज खाने के बाद 150 लोग की तबीयत खराब हो गई। पीड़ित लोगों को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। इधर प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। इसके कारण अब तक सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पूर्व भागों के जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल से पटना, गया और सारण

0: राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भी मानसून के सक्रिय होने से बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है। इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी है। नेपाल में बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1,00,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देर रात बराज से 1,09,55 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिला प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी है। किशनगंज के नए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है। इधर जहानाबाद के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पटना स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में आज से 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मियों को कृषि संबंधी सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के संग्रहण, गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी अन्य विषयों की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीराला सम्राट चौधरी ने आज पटना में 3,96,000 से ज़्यादा किसानों के खातों में DBT के तवसुत से 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी रकम मुंतकिल की। ये रकम ज़रई इनपुट सब्सिडी मंसूबा के तहत बहारी रबी 2025-26 के तहत इस साल मार्च माह में आए आंधी तूफान से हुए फसल नुकसान के लिए दी गई है। वज़ीराला जनाब चौधरी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस मंसूबा के तहत 13 अजला के मुतासरा किसानों को सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कहा कि मज़ीद दरख्वास्त मौसूल होने पर तस्दीक के बाद उन किसानों को भी सब्सिडी की रकम दी जाएगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और वज़ीर आफात मैनेजमेंट रत्नेश सदा और वज़ीर ज़रात विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत की सदारत में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत रियासत सतही स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग मुनक़द की गई। मीटिंग में सभी महकमों के अफसरान को देही तरक्याती मंसूबों को मुस्तैदी से पूरा कराने की हिदायत दी गई है। मुख्तलिफ ज़िलों में के ज़िला मजिस्ट्रेट और दीगर आला अफसरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भोजपुर जिला के शाहपुर में पुलिस एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी के मौत के मामले में फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। अदालत ने अर्जी गुजार को हिदायत दी है कि वो रजिस्ट्रार के सामने मामले का जिक्र करें, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जांच कराने का CBI अर्जी में इनकाउंटर के वाक़े की CBI मुतालबा किया गया है। सुपौल जिला के जदिया थाना इलाके के तहत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड नंबर 10 में कल रात एक श्राद्ध तकरीब में भोज खाने के बाद 150 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। मुतासरा लोगों को त्रिवेणीगंज सब डिविज़नल अस्पताल में दाखिल कराया गया। फ़िलहाल सभी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। उधर इंतज़ामिया ने पूरे वाक़े की जाँच शुरू कर दी है। नेपाल में बारिश के सबब कोसी नदी की आबी सतह में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हमारे सुपौल के नामा निगार ने बताया कि इस साल पहली बार नदी की आबी सतह 1,00,000 क्यूसिक के अदादो शुमार को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देर रात बराज से 1,09,55 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। ज़िला इंतजामिया ने बढ़ती हुई आबी सतह के मद्देनज़र चौकसी बढ़ा दी है। किशनगंज के नए ज़िला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार ने आज अपना ओहदा संभाला। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़िला में सरकारी मंसूबों का मौसर नफाज उनकी अव्वलिन तरजीह में शामिल है। वहीं जहानाबाद की नौ तकर्रुर ज़िला मजिस्ट्रेट छिरिंग वाई भुटिया ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। पटना वाक़े नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस में आज से 4 रोज़ा रीजनल तरबियती कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। तरबियत प्रोग्राम के दौरान मुलाजमीन को ज़रात से

लेखा परीक्षक एवं सहायक के कुल 1829 पद आवेदक के लिए आवेदन ज्ञापित किए गए हैं। आवेदन शुरू होने की पहली तिथि 14/7/2026 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/8/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। JKSSB 2026 के कुल 130 पद ज्ञापित किए गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 यानी आज, आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 40 साल है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं jkssb.nic.in पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2026 के कुल 607 पद दिए गए हैं। आवेदन शुरू होने की पहली तिथि 4/6/2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। इस पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in पर।

एसएससी सीजीएल 2026 के 12,256 पद खाली हैं। आवेदन शुरू करने की तिथि 21/5/2026 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22/6/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 32 साल रखी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बीएसएनएल ने कुल

स्वपद निकाले हैं, जिसमें आवेदन शुरू करने की तिथि 4/6/2026 है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3/7/2026 है। न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल और अधिकतम उम्र सीमा 30 साल है। आवेदक इसकी विस्तृत जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर देख सकते हैं। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार, जिसका कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: पर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिसकर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशपी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, BJD और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को

0: अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बात

0: बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक

0: जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः हम आपको लिए चलते हैं अपने फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है अनजान ने, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी के हैं। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुने थे फिल्म राजकुमार का यह गीत। गीत रचना हसर जयपुरी की थी, संगीत निर्देशन शंकर जय किशन ने किया था। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म चिराग से।

राजेंद्र किशन के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म भाई भाई से। संगीत निर्देशन मदन मोहन ने किया था, गायक कलाकार लता मंगेशकर। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म तीन देवियां से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और इस गीत को धुन दिया है SD बर्मन ने।

चलते चलते इस फिल्म का भी आप गीत सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार अमित खन्ना और संगीतकार बप्पी लहरी थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं राखी कुमारी, आइए इनसे सुनते हैं नचारी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। परुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे राखी कुमारी के स्वर में लोकगीत। अभी हमारे स्टूडियो के घर में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00।

0: कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पूर्णिमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्त्र नाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
1: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पतिभक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
2: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
2: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा

0: कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
1: इस पत्र का उत्तर आया।
2: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
1: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली,
3: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
0: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
3: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
1: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
4: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है।

0: दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो
1: ऐसा भी होता है भाई, देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है।
0: बिल्कुल
1: फिर वो
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब
0: हाँ
1: अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन
0: सही
1: गया, एक
0: बात है।
1: रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
0: बिल्कुल। और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और
1: बिल्कुल
0: घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है। तो नए सत्र में ये चीजें रहती, तो वही माता पिता और शिक्षक
1: देखो
0: की बच्चों की
1: इनकी,
0: मदद करें,
1: हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को। छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना। फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो
0: बिल्कुल
1: उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा
0: बिल्कुल
1: लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत
0: बिल्कुल
1: जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है।
0: बिल्कुल
1: तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ
0: जी,
1: रूटीन ही नहीं था
0: रूटीन ही
1: असल
0: नहीं
1: में,
0: था कहना
1: और अब
0: चाहिए।
1: एक एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। उनको छोटी छोटी चीजें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे हैं पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा,
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो
1: और
0: हमारे
1: वहीं
0: साथी
1: देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है, बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण हो चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी है। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है है ना।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
0: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें,

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
1: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
0: बिल्कुल, गर्मी
1: और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती
0: है। देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश के फुहारे आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। और
1: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से है ये, और कह रही है कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा न होने दें, और साथ ही साथ इस

0: बात का ध्यान रखें कि अपने जो आसपास की आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
1: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है, तो हम उसमें और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, और शाम हो जैसे शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे और मच्छरों से
1: और इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे बाहर के और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
0: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए, अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
1: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।

0: फिर से तो
1: अब तो भाई
2: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद जो सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1 चम्मच, नमक, गरम मसाला ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फैटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर ये सब हल्का हल्का भो रखना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो, बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने, आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवें आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
2: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना
1: जी।
2: आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं। तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
2: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये

0: क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आया कि लिवर फैटी है, तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी।
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। तो 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहां पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की, हमने वहाँ पे तीन तीन साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज़ की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग ख़त्म करने के लिए गैस्ट्रेंटोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें। तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5 to 10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5 से 10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे अधिक दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड।

0: reasons. तो there are medicines available हैं दवाइयाँ, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है सुझाव कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है. मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं. स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है. तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए. अगेन, बिना दवाई के हो सकता है. मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो. अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं.
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
0: हाँ, तो बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड. आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं. मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी. तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है. फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग. हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म. तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम. फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है. तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है.
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को ले, 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा. ये बहुत बड़ा नंबर है. ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ. अगर आप देखें, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दे, दैट्स अ वेरी बिग नंबर. बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है. एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है. तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा.
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को.
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ, लाइक थोड़ी बीट सुननी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना.
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है.
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है. सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए.

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लिवर सोराइसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फिटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं। पर

0: बस सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में अगर आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल की जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
1: ओके,
0: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
1: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है, खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन, चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
1: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलत फहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
0: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके 2 जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादा कर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है, और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम, इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूं तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वोमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, हाँ लेते रहते हैं, बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी जी।
1: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
0: और डॉक्टर, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
1: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली

0: पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पॉलरी को ढूंढते हैं। अगर एच पॉलरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पॉलरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी, जी, जी.
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक का कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक है।
0: Correct.
1: और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया,
1: चल छैया छैया, सुनते हैं यही गाना।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़। साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में युवाओं के लिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम।

तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के आज के इस अंक को सुनने वाले आप तमाम युवा दोस्तों को आपके इस रेडियो हम सफर संजीव कुमार सुधाकर का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं युवा दोस्तों? बिल्कुल अच्छे हैं ना? अरे आप अच्छे रहें इसके लिए तो हम हमेशा ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे तमाम सुनने वाले स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खासकर हमारे युवा साथी जल्दी जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। हर दिन की तरह हाजिर हैं हम आपकी ही पसंद के इस कार्यक्रम तरुण कुसुम के आज के इस अंक को लेकर। युवा दोस्तों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में केवल गीत संगीत ही नहीं, हम कुछ ऐसी बातें भी आपके साथ करते हैं जो बातें हमारे जिंदगी को बेहतर करती है, जो हमें कहीं ना कहीं जिंदगी में सफल होने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो युवा दोस्तों, आज भी इस कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय हमने आपके लिए लाया है बिल्कुल आपकी पसंद का विषय है। विषय आपके विकास में, यानी युवाओं के विकास में संगीत और रचनात्मक कलाओं की भूमिका। आज इस कार्यक्रम में अब से लेकर शाम 5:40 तक हम हैं आपके साथ। थोड़ी सी चर्चा भी होगी, जरूरी बातें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हर दिन की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है तो सबसे पहले ये प्यारे प्यारे लोकगीत आप तक पहुंचने चाहिए। इनकी ये सौंधी खुशबू जो हमें तरोताजा करती है। साथ ही साथ आज चर्चा का विषय भी है युवा विकास में संगीत और रचनात्मक कलाओं की भूमिका। तो ये जो लोक संगीत, गीत, चित्रकला, ये सब रचनात्मक कलाओं में ही तो आते हैं। बातें होंगी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए ना सबसे पहले ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

छोट छोट रोरी करैया। क्या सुंदर से अभिव्यक्ति। कहते हैं हम जिनका सम्मान करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उनसे मिलने वाली राह में अगर कठिनाई भी हो, मुश्किल भी हो, तो वो मुश्किल भी हमें परेशान नहीं करती। ऐसा लगता है कि चाहे राह में कांटे भी बिखरे हो, नुकीले पत्थर ही क्यों ना हो, हम जिन्हें प्यार करते हैं, जिनका आदर करते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, उनसे मिलने की जब हमारे दिल में सच्ची लगन होती है ना, तो ये कंकर पत्थर कांटे भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। सुंदर सी अभिव्यक्ति इस लोकगीत के माध्यम से जो हमें ये सिखाती है। और दोस्तों, युवा साथियों, आज चर्चा का विषय भी है कि आपके विकास में ये जो लोक कलाएं हैं, रचनात्मकता हैं, इनकी क्या भूमिका हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये जान लें कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में संगीत और कला जैसे नृत्य, चित्रकला और रंगमंच अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये माध्यम न केवल रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, यानी आपके सीखने की जो आदत होती है ना, उसमें भी ये बढ़ावा देते हैं, बल्कि आपको एक अलग पहचान भी मिलती है इन चीजों के जरिए। संगीत और कला युवाओं को एक अलग पहचान देती है, भीड़ से अलग करती है। आप एक बात गौर करेंगे कि युवाओं की टोली जब गांव में, समाज में कोई त्योहार होता है और एक अभिभावक होते हैं जो रंगमंच के लिए युवाओं का चयन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कला और संगीत, ये रंगमंच, ये

ऐसे क्षेत्र हैं ना जो आप में सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। जब आपके अंदर सहयोग की भावना आती है ना, रचनात्मकता की भावना आती है, नई चीजों को सीखने की ललक जगती है, तो स्वतः आपका तनाव दूर हो जाता है। आप व्यस्त रहते हैं, नई चीजों को सीखना आपको उत्साहित करता है, आपको खुशी देती है। याद होगा बचपन में जब हम लोग पहली दूसरी कक्षाओं में पढ़ते हैं और चित्रकला का जो विषय होता है, अगर हम अपने हाथों से छोटे से एक कोई भी तस्वीर बनाते हैं, मान ले जाए हमने आम की तस्वीर बनाई, भले ही वो टेढ़ा ही मेढ़ा ही क्यों ना हो, लेकिन दिल को बड़ी खुशी देती है कि भाई देखो मैंने आम की ये तस्वीर बनाई है। तनाव को दूर करने का सबसे सुंदर माध्यम होता है रचनात्मकता। ये आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देती है। जो चीजें आपको कल तक लग रहा था कि असंभव है, वो चीजें भी आपके लिए संभव होनी शुरू हो जाती है। अब देखेंगे कि संगीत के युवाओं ने कई गांव में समाज में बैंड बनाए हैं किसी खास नाम से। 5-7 युवाओं की टोली होती है, विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाना वो सीखते हैं। सबकी अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है, सबकी अपनी अपनी अलग कला होती है, मगर वो एक टीम होते हैं। और जब वो टीम कहीं जाती है, देखिए आर्थिक तौर पर भी ये आपको उन्नति प्रदान करती है। छात्रों के जीवन में आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ होना बड़ा ही आवश्यक होता है। हर चीज के लिए अर्थ की जरूरत होती है और अर्थ प्राप्ति के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो हम तो यही कहेंगे आप युवा साथियों से कि आज से ही दिल पर हाथ रखिए कि आपको ऐसा क्या है जो बहुत पसंद आ रहा है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उसे तो हमेशा करना है, अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर, लेकिन जो खाली समय है ना, अब जैसे ये शाम का समय है, आप संगीत सुनते हैं तरुण कुसुम इस कार्यक्रम के माध्यम से, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। लोक गीत संगीत चित्रकला, ये सब चीजें जिंदगी में इंसान को आगे बढ़ाती है, तनाव को दूर करती है, सहयोग की भावना को विकसित करती है। मतलब हर तरफ से ये आपको फायदा देने वाली ही चीजें हैं, है ना युवा दोस्तों। आज आपका ये रेडियो हम सफर को ज्यादा बातें कर रहा है, भाई हमें आप तक लोक संगीत भी पहुंचाना है ना। अब से शाम 5:40 तक इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ है आपका ये सुधाकर।

काली अयलो दरबार, क्या बात है भाई। माँ के चरणों में ये भक्ति और श्रद्धा से भरी हुई आराधना लोक संगीत के माध्यम से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। युवा दोस्तों, एक बात आपने गौर किया होगा, जब आप इन लोकगीतों को सुनते हैं ना, तो इनको सुनने के बाद स्वतः ही आप अपनी संस्कृति से जुड़ते चले जाते हैं, अपनी जड़ों को महसूस करते हैं, इन्हें समझते हैं, इन्हें जीते हैं। ये जो जब हम खुद ही अपनी संस्कृति को समझना शुरू करते हैं, तो ये हमें जहाँ एक ओर आनंदित करता है, वहीं हमारे ज्ञान को भी बढ़ाता है। हम अपने पूर्वजों के जीवन शैली को समझते हैं, उनके जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें अपनाते हैं, जिंदगी की परेशानियां स्वतः दूर हो जाती है। आज भी कई ऐसे गीत संगीत है जिनको सुनने के बाद स्वतः ही आप यादों के उस दुनिया में चले जाते हैं, जहां ऐसी चीजों को आप याद करते हैं जो अब खुली आंखों से देखना संभव नहीं होता, लेकिन उन्हें भी हम अपनी कल्पना की आंखों से जरूर देख लेते हैं। उस पल को, उस समय को जो बीत चुका है, जो दोबारा हमारे

सामने नहीं आ सकता। दोस्तों, जब हम अपनी संस्कृति को जानने की शुरुआत करते हैं ना, तो ज्ञान बड़ा ही व्यापक होता है। तो फिर धीरे धीरे हमें अन्य देश, अन्य समाज की संस्कृति को भी, लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक कलाओं को जानने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। और यह हमें औरों के प्रति सहानुभूति हमारे हृदय में पैदा करने का एक बड़ा ही बेहतरीन माध्यम होता है। हम अपनी बातों को तो समझते ही हैं, और भी लोगों की भावनाओं को जब हम समझने लगते हैं तो हमारी दृष्टि, हमारा सोच व्यापक होता है, उसमें विशालता आती है, और यह हमारी जिंदगी को सफल बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। आज भी आप देखेंगे कि लोक संगीत, लोक कलाओं के कई ऐसे एक्सपर्ट हैं, कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो बड़े मुश्किल से हमें मिलते हैं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, चाहे वाद्य यंत्र की बात हो, पुराने वाद्य यंत्र, जो अब कई ऐसे वाद्य यंत्र है जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, लोगों ने उन्हें पुराना समझकर छोड़ दिया, लेकिन एक बार फिर वे चीज़ें वापस आ रही हैं। वो वाद्य यंत्र आज भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, उनकी वो मधुर संगीत हमें हमारी जड़ों से जोड़ देती है ना युवा दोस्तों। बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपके लिए ये प्यारा सा लोकगीत।

जय भोला भंडारी। युवा श्रोताओं के लिए आप सुन रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम तरुण कुसुम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। युवा दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है संगीत, लोक कलाकार, कलाएं। ये युवाओं के विकास में कितने सहायक होते हैं। अब इन लोकगीतों को जब आप सुन रहे होंगे तो इनमें बजने वाले विविध वाद्य यंत्रों को भी आप जरूर सुना होगा। दोस्तों, ये जो संगीत है, ये जो कला है, ये युवा मन को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, जिस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है धैर्य और अनुशासन की। सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ होता है ना, तो वो होता है अनुशासन और धैर्य। अब देखेंगे कि कोई भी वाद्य यंत्र जो व्यक्ति आज पर ही बेहतर तरीके से, निपुण तरीके से आपके सामने उसकी प्रस्तुति दे रहा है, उसे बजा रहा है, उसे वहां तक पहुंचने के लिए बड़े ही धैर्य का सामना करना पड़ा है। लगातार अभ्यास, अनुशासन, इन चीजों को जब उसने अपनाया है, बारंबार अभ्यास किया है, तब जाकर वो इतना निपुण हो सका है कि आज उसके हाथों से बजने वाले वाद्य यंत्र लोगों को खींचते हैं अपनी ओर। तो कहीं ना कहीं जब हम लोक कलाओं को सीखते हैं या फिर रचनात्मकता जब हमें आती है ना, तो यह हमें स्वतः ही धैर्य और अनुशासन की जो भावना है ना, उसे भी बढ़ाती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि भाई जब हम खाली हैं, वैसी चीजें, वैसी बातें जो हमारे पूर्वजों ने सहेज कर रखी है, उन्हें हम सीखने की कोशिश करें, उन्हें जीवन में अपनाने की कोशिश करें, जो हमें कहीं ना कहीं फायदा ही देगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। समय का भी सदुपयोग होगा, एक अलग पहचान मिलेगी आप युवाओं को। आज भी आप देखते होंगे जब शादी ब्याह का मौसम होता है ना, तो गाँव में जो सबसे बेहतर गीत गाने वाली महिलाएँ होती हैं, उन्हें बड़े प्यार से शादी की तिथि तय होते ही उनके घर पर जाकर माँ बहनें कहना शुरू कर देती है कि भाई फलाना, आपको जरूर आना है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। अब बताइए, उसके एक गुण ने पूरे गांव में कई महिलाएं हैं, लेकिन वे उन्हें ही ढूंढती हैं जिनमें कला होती है, लोक संगीत होता है, गीत की जानकारी होती है, बेहतर कंठ होते हैं। तो ये सब चीजें जिंदगी में आपको सफल बनाती है दोस्तों। हमेशा कोशिश करते रहना है कि वैसी चीजें जो कहीं परंपरागत रूपों से हमारे समाज में चलती आ रही है। अच्छा, एक बात और गौर करेंगे आप, जब आप किसी सांगीतिक टीम में या रंगमंच में शामिल होते हैं ना, तो ये आपको नेतृत्व की भी क्षमता बढ़ाती है, आपको ये नेतृत्व भी सिखाती है, नेतृत्व करना, एक लीडर का गुण स्वतः ही आप में विकसित होने लगता है। चीज़ों को सहेजना, चीज़ों को सजाना, किस चीज़ को कैसे पेश करें कि वो और ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी भाषा, आपके बोल

ले चलने का जो तरीका है, उस सब में मतलब अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है ना, वो आपको देखिए किस तरह से एक साथ कई गुण से संपन्न कर रहा है, जिन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को जब कितना बढ़ाता है, जब आप मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं, हजारों लाखों लोगों के बीच में जब आप खड़े होकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, यह आपके विश्वास, आपके अनुशासन, आपके धैर्य की ही तो परीक्षा होती है ना युवा दोस्तों? बिल्कुल, कला संगीत रचनात्मकता को अपने जीवन में आपने अपनाया है। हम जानते हैं हमारे युवा बरही कला और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, कई प्रतिभा संपन्न कलाकार विभिन्न क्षेत्रों में हैं, लेकिन वैसे हमारे युवा दोस्त जिन्होंने अब तक इसे नहीं चुना है, अपनी जिंदगी में नहीं शामिल किया है, वो आज से ही इस कार्यक्रम को, अभी आप सुन रहे हैं ना, अभी से ही अपने दिल पे हाथ रखकर देखें ना कि क्या बजाना, क्या सुनना, क्या करना आपको अच्छा लगता है, उसे जरूर करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है।

युवा दोस्तों, घड़ी की सुई अब हमें और ज़्यादा देर आपके साथ इस कार्यक्रम में बने रहने की इजाज़त नहीं दे पा रहा। तरुण कुसुम, इस कार्यक्रम के आज के इस अंक से दीजिए अपने इस रेडियो हम सफ़र संजीव कुमार सुधाकर को विदा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारियों में ज़रूर लगे रहिएगा और जल्दी ईश्वर आपको सफलता दे, यही हमारी कामना है। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम तरुण कुसुम। इस समय शाम के 5:40 हुए हैं। समय हो चला है चंद गीत और गजल।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे थे चंद गीत और गजलें। आज जिन कलाकारों की गाए गजलें हमने आपको सुनवाए वे थे जसवंत सिंह, पंकज उधास और जगजीत सिंह। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR। इस ऐप के माध्यम से हम आपके स्मार्टफोन पर भी उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 6 होने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14

छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड

0: अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय करडिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। श्रोताओं, अब जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे महाकवि की रचनाएं विद्यापति गीत। ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा गांव घर अपने निर्धारित समय शाम 6:30 पर। आज गांव घर कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

साथ ही इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम। शाम 7 बजे समय होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। आज खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान श्रोता सुनेंगे चर्चा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, साथ ही मौसम संबंधी भी जानकारियां किसान श्रोताओं तक इस कार्यक्रम में पहुंचाई जाएगी। शाम 7:30 समय होगा प्रादेशिक समाचारों का, इसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल आप सुनेंगे शाम 7:47 पर। शाम 7:52 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ प्यार भरे फिल्मी गाने फिल्म संगीत के हमारे कार्यक्रम में। रात 8:15 ये समय होगा हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार का। श्रोताओं आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक समय याद रखें आज रात 9:30 पर। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे और इसके ठीक बाद यानी आज ही रात 10 बजे से आप सुनेंगे अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। समय याद रखें रात 10 बजे से 11 बजे के बीच हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गाने तो हमारे ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9430029353। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय है आज ही रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

छिटपुट हुई बरसात के दिनों में अपने घर के छोटे बच्चों को वैसी जगह खेलने जाने से मना करें जहां पानी से भरे हुए गड्ढे हो या वैसी जगह जो जल भराव वाले क्षेत्र हो। ध्यान रखें, जेसीबी द्वारा खोदे गए गड्ढों में भी जल भराव के बाद वो खतरनाक हो जाते हैं। अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें ऐसी जगह खेलने जाने से मना करें।

इस समय शाम के 6:10 हुए हैं। समय हो चला है महाकवि की रचनाओं का। सुनिए विद्यापति गीत।

0: महाकवि की ये रचनाएं आप सुन रहे थे विद्यापति गीत। आज कलाकार थे गौतम मिश्र, राम कुमार और प्रेम कुमार मल्लिक। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी कल्पना झा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ पटना मे 3,96,000 सँ बेसी किसानक खाता मे DBT माध्यम सँ 200 करोड़ टाका सँ बेसीक अनुदान राशि अंतरित कयलनि। ई राशि कृषि इनपुट अनुदान योजनाक अंतर्गत वासंतिक रवि 2025-26 अंतर्गत एहि वर्ष मार्च मास मे आयल अन्हर बिहाड़ सँ भेल फसल नोकसानक लेल देल गेल अछि। मुख्यमंत्री श्री चौधरी सभा के संबोधित करैत कहलनि जे एहि योजनाक अंतर्गत 13 जिलाक प्रभावित किसान सभ के अनुदान देल गेल अछि। ओ जनौलनि जे आओर आवेदन प्राप्त होयबा पर सत्यापनक बाद ओहि किसान सभ के सेहो अनुदान राशि देल जायत। एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार

0: चौधरी आ विजेंद्र प्रसाद यादव आ आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सादा आ कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा सेहो उपस्थित छलाह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलनि जे चंपारण क्षेत्र के देशक प्रमुख कुसियार उत्पादन क्षेत्रक रूप मे विकसित करबाक लेल विशेष कार्य योजनाक अंतर्गत शीघ्रता सँ काज कयल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री आई पटना मे गन्ना उद्योग विभागक समीक्षा बैसकक दरमियान अधिकारी सभ के राज्यक 9 बंद चीनी मिल के फेर सँ चालू करबाक आ 25 नव चीनी मिलक स्थापना योजना के गति देवाक निर्देश देलनि। राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कहलनि जे दाखिल खारिजक प्रत्येक मामिलाक निष्पादन सँ पहिने ओकर मिलान सरकारी भूमि अभिलेख सँ अनिवार्य रूप सँ कयल जायत। श्री जायसवाल पटना मे पत्रकार सभ सँ गपशप करैत कहलनि जे विभाग एहि संबंध मे सभ जिलाधिकारी के निर्देश जारी कऽ देने अछि। ओ कहलनि जे एकर उद्देश्य सरकारी जमीन पर गलत तरीका सँ जमाबंदी कायम बाक संभावना के समाप्त करब आ सरकारी संपत्ति के सुरक्षा सुनिश्चित करब अछि। सर्वोच्च न्यायालय भोजपुर जिलाक शाहपुर मे पुलिस मुठभेड़ मे भरत भूषण तिवारीक मृत्युक मामला मे शीघ्र सुनवाई सँ मना कऽ देलक अछि। अदालत याचिकाकर्ता के निर्देश देलक अछि जे ओ रजिस्ट्रार के सोझा मामिलाक चर्चा करैत ओहि के बाद आगाक प्रक्रिया तय कयल जायत। याचिका मे मुठभेड़क घटनाक सीबीआई जांच करेबाक मांग कयल गेल अछि। बिहार पुलिस भोजपुर मुठभेड़ मामिला मे लापरवाहीक बात स्वीकार कयलक अछि। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सुधांशु कुमार पटना मे पत्रकार लोकनि सँ गपशप करैत कहलनि जे एहि मामिलाक निष्पक्ष आ वैज्ञानिक तरीका सँ जांचक लेल शाहाबाद प्रक्षेत्रक डीआईजी के जिम्मेदारी देल गेल अछि। ओ कहलनि जे एहि मामिला मे लापरवाही बरतय वला थाना प्रभारी सहित 5 गोट पुलिसकर्मी के निलंबित कऽ देल गेल अछि। मौसम विभाग जनौलक जे काल्हि सँ पटना, गया आ सारण सहित राज्यक दक्षिण पश्चिम भाग मे सेहो मॉनसून के सक्रिय होयबा सँ वर्षाक संभावना अछि। विभाग अगिला 24 घंटाक दरमियान अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया आ सुपौल जिला मे किछु ठाम तेज हवाक संग भारी वर्षाक आशंका जतौलक अछि। एहि दरमियान किछु स्थान पर वज्रपात सेहो भऽ सकत। नेपाल में वर्षाक कारणे कोसी नदीक जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज कयल जा रहल अछि। हमर सुपौल संवाददाता जनौलनि जे एहि वर्ष पहिल बेर नदीक जलस्तर 1,00,000 क्यूसेक के पार कऽ गेल अछि। कोसी बराज पर बढ़ैत दबाव के देखैत बेस राति बराज सँ 1,09,55 क्यूसेक पानि छोड़ल गेल। जिला प्रशासन बढ़ैत जलस्तर के देखैत सतर्कता बढ़ा देलक अछि। सुपौल जिला प्रशासन जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायतक दतुआ वार्ड संख्या 10 मे काल्हि राति एक श्राद्ध कार्यक्रम मे भोजन कयलाक बाद 100 सँ बेसी लोकनिक मोन खराब होयबाक खबरि के भ्रामक जनौलक अछि। जिला जनसंपर्क अधिकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कऽ जनौलनि जे त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल मे मामूली रूप सँ बीमार मात्र 2-3 गोटे के आनल गेल छल। चिकित्सक लोकनि हुनकर सभक जांच कयलनि। किशनगंज नव जिलाधिकारी नवीन कुमार आई अपन पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। ओ पत्रकार सभ सँ गपशप करैत जनौलनि जे जिला मे सरकारी योजना सभ के प्रभावी रूपे लागू करबाक हुनकर प्राथमिकता अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। समय हो चला है ग्रामीण भाइयों के लिए हमारे इस कार्यक्रम गांव घर का।

0: गाम घर सुननिहार स्नेही श्रोता भाई बहन लोकन के उगना भाईक नमस्कार। आई सोम दिन अछि आ आजुक दिन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल लऽ कऽ अबैत छियनि हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सँ। एहि कार्यक्रम अंतर्गत आइ हिनका लोकनिक लेल लऽ कऽ आयल छियनि एकटा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, एकर संगे गीत नादक आनंद लेब, किछु सन्देश बिलहब, मुदा एहि सबसँ पहिने दू टप्पी कऽ लैत छी। स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकनि, हमरा लोकनि केंद्र सरकार द्वारा चलाओल जा रहल प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण 15 सूत्री कार्यक्रम योजना सँ लाभ उठाबी, कारण ई अल्पसंख्यक लोकनिक विकास के लेल चलाओल जा रहल एकटा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र सरकार के माध्यम सँ ई योजना अछि। एहि 15 सूत्री कार्यक्रम मे कतेको विषय पर ध्यान देल गेल अछि, जाहि मे शिक्षा एकटा अछि, कौशल विकास योजना जाहि मे सीखो और कमाओ हुनर योजना, महिला लोकनिक लेल नई रोशनी योजना, तो एहि सब गप पर हमरा लोकनि ध्यान दी आ चलाओल जा रहल योजना सँ लाभ उठाबी। बेर रहत तब फिर गप सप करब, मुदा आप पहिने किछु सन्देश भी लहि लैत छी।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
0: स्नेही श्रोता भाई बहन लोकन, आप हमरा लोकन सुनै छी अरविंद कुमार झाक गाओल ई नचारी, तो सुनल जाए।

0: एखन हमरा लोकनि अरविंद कुमार झाक गाओल बड़ नीक ई नचारी सुनलहुँ आ आब सुनैत छी ई एक गोट बाह्य ध्वन्यांकन पर आधारित भेंटवार्ता विषय अछि बुजुर्ग एवं योग। भेंटवार्ताकार छथि डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव आ हिनकासँ गप कऽ रहल छथि शंकर कुमार चौधरी। तऽ सुनल जाए दुनू गोटाके बीच भेल ई गपशप।
1: आइ हम मोहल्ला मदारपुर दरभंगामे आयल छी तऽ अपने जनतब देल जाउ।
2: विषय तऽ बहुत गूढ़ अइ, बहुत ज़्यादा बाजक एहिमे जरूरत पड़तै, लेकिन तैयो हम शॉर्टमे अहाँके एहि विषयपर बतबै छी। जे लोग 60 ऊपर चलि गेला, जिनकर उम्र भऽ गेलनि 60 से ऊपर, हुनका सबसे पहिले 6 बजे साँझके बाद हुनका आहार ग्रहण नहि करऽके छनि। केवल गरम पानी पी सकै छथि, सुषुम पानी पी सकै छथि, अन्न ग्रहण नहि करता। दोसर, ओकर बाद 6 बजेके बाद भोजन नहि करथिन और ओकर बाद केवल रातिमे पानी पी कऽ सुतथिन। 4 बजे भोरके बाद बिछावन पर नहि रहबाक चाही हुनका। ई करता नित्य क्रिया से निवृत्त भऽ कऽ निश्चित रूप से बूढ़ा के लेल तारासन, योग में तारासन सबसे उपयुक्त छै। शरीर के संतुलन बनल रहतन, शरीर सीधा रहतन, पैर के मांसपेशियो सेहो मजबूत रहतन। ओकर बाद जो दोसर छै वृक्षासन, वृक्षासन करू, अहाँ के माइंड के संतुलन बनल रहत, शरीर के संतुलन बनल रहत। ओकर बाद तेसर अइ वज्रासन, जे 5 मिनट से लऽ कऽ 10 मिनट तक वज्रासन पर बैठू। वज्रासन केना कयल जाइ छै नेट पर अखनी कतौ देख सकै छी अहाँ वज्रासन, ओहिपर विशेष हम नहि चाहै छी। ओकर बाद भुजंगासन, सर्पासन भी सेहो कहल जाइ छै, भुजंगासन कहल जाइ छै, भुजंगासन करू, जैसे शरीर में स्ट्रेच आयत। पवन मुक्तासन, शशकासन, सवासन, सवासन भेल मैंने सब जेहन आकार भऽ के सब जैसा सो जाना है, सब जैसन मतलब मुर्दा जैसन। सवासन के मतलब भेल जे मुर्दा जैसन अहाँ सुति जाओ आ एकदम शरीर के स्थिर कऽ लियो सवासन। प्राणायाम में जे छै से बुजुर्ग के अनुलोम विलोम करू, ब्राह्मरी प्राणायाम करू, दीर्घ श्वास, लंबा ओंकार, लंबा श्वास लिया आ ओम ओम करैत ओकरा अंत करू, लंबा सांस लिया और लंबा ओकरा छोड़ू। या भेल जे अहाँके मुख्य रूप से जे अहाँ जे छै से प्राणायाम अनुलोम विलोम करू, माइंड शांत हुए अहाँके। यदि

0: उच्च रक्तचाप है, शुगर है, ये सब सब कंट्रोल हो जाए। लेकिन 6 बजे शाम के बाद भोजन नहीं करना है और रात में पानी पी कर के सोना है। जो खाना है दिन में ही खाना है, और चूल्हा पर चढ़ा हुआ अनाज 24 घंटा में एक ही बार खाना है। शाम में यदि खाना है, दिन में यदि आपने खा लिया तो शाम में 6 बजे खाना है, फल खाइए, खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, अंकुरित अनाज खाइए, चिनिया बादाम का अंकुरा खाइए, मूंग का अंकुरा खाइए, चना का अंकुरा खाइए, बहुत से बहुत 20 से 25 ग्राम उससे ज्यादा।
1: यानी मात्रा पर आहार के सेहो ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ, एकदम एकदम। ये नहीं जब अंकुरित अनाज कहलूँ तो सीधे अहाँ आधा किलो लो लेबे खा लेबे, नहीं, 20 से 25 ग्राम आ खूब चबा कर। खनाई के बारे में कहल गए अंग्रेजी में, ईट यू सॉलिड एज लिक्विड आ ईट यू लिक्विड एज सॉलिड। कह के माने ही, जब अहाँ ठोस आहार खाइ छी तो ओकरा एते चबैयो मुँह में जो पानि भ जाए तब निगलू, आ जब अहाँ लिक्विड खाइ छी, लिक्विड ईट यू लिक्विड, जहाँ जब अहाँ दूध पिए छी, लस्सी पिए छी, पानि पिए छी, तो ठोस के तरह ओकरा मुँह में चलैयौ, तखने ऊ पचत। एक लोटा दूध पी लेलौ तो ऊ हासिल नहीं है, सीधे एन से निकल जात, ऊ हासिल नहीं जब तक ओकरा में लार शामिल नहीं है। और कुछ बाजा चाहिए?
1: इहो बड़ नीक अहाँ कहलिए जे हमरा लोकन आहार जे लै छी ओकर लेबाक ढंग की हेबाक चाही।
0: अगर ढंग नहीं जनै छै,
1: प्रायः लोग एहन अछि देखबा में अबैत अछि जे वृद्धावस्था में एहि पर ध्यान नहीं दऽ पबैत छथिन, लेलौ खा लेलौ बुझल।
2: हमरा लोकन एखन ई भेंट वार्ता सुनलौ, बिखैसल बुजुर्ग एवं योग। भेंट वार्ताकार छलाह डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, आ हिनका से गप कर रहल छलाह शंकर कुमार चौधरी। तो दुनू गोटा के बीच भेल ई गप सब सुनलौ। आ स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकन, वास्तव में हमरा लोकन के अइ गप पर ध्यान देबाक चाही जे जो स्वस्थ रहब तखने सब किछु अछि। परिवारों में जो सुख रहते अछि, शांति रहते अछि, तो अइ लेल सबसे बेसी आवश्यक अछि जे हमरा लोकनि स्वस्थ रही। स्वस्थ रहबाक लेल बुजुर्गावस्था में विशेष रूप से अपन जीवन शैली पर ध्यान देबाक चाही। एतबे नहि, दिनचर्या जे अछि ओ उम्र के हिसाब से रखबाक चाही। योग जो करै छी तो ताहू में उम्र के ध्यान रखैत करबाक चाही। तो अइ सब गप पर हमरा लोकनि ध्यान दी, आ तनाव मुक्त बुजुर्गावस्था के जीवन व्यतीत करी। तो आब हमरा लोकनि सुनै छी ई प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, तो सुनल जा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है,

0: पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, ओ माई गॉड कितने कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं, हाँ आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं, नोट कीजिए नंबर, नंबर है 94318-99002, 94318-99002। और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ हाँ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे, आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी ये बीएससी इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं, तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
0: नीरज जी मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियो वैस्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
1: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं, कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहाँ कार्डियक सर्जरी हो रही है। तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ बुनियाद कार्यक्रम है। युवा साथियों टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ नंबर नोट करें,

0: अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121001 ये नंबर है। अच्छा नीरज जी एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं
1: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002 और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
1: सर बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं जो रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट, वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
0: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
1: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
0: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं, आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800121001 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहां आए, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल

0: पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप?
1: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है और फैकल्टी जो हमारे हैं, अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
0: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है और ये सारी चीजें, तमाम चीजें हमारे युवा साथी उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
1: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके, फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
0: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी, क्योंकि सवाल आएंगे मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: स्नेही श्रोता भाई बहन लोकन, एखन हमरा लोकन सुनलो ए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आ हमरा लोकन फिर अगला सोम दिन ए कार्यक्रम लोक आब, आ एकर संगे आब आजुक अनुभव के चश्मा से कार्यक्रमक बेर संपन्न भ रहल अछि। खेती गृहस्थी में स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकन के स्वागत करै छन। आय एहि दलान पर हिनका लोकनिक लेल लक आयल छी किछु गीतनाद, एकर संग गपशप सेहो करब मौसम संबंधी जे जनतब ओहो देव, समसामयिक जे कृषि संबंधी कार्य ताहि संबंध में सेहो चर्चा करब, मुदा एहि सबसँ पहिने अपना में दू टप्पी कऽ लै छी जे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के की लाभ अछि आ एहि योजना सँ कोना लाभ उठेबाक चाही। स्नेही किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, हमरा लोकनि जनैत छी जे पटौनी के काज करबाक

लेल बड़ आब पूजी के आवश्यकता होइत अछि। कारण पानि जे हमरा लोकनि लैत छी पटबै के लेल, ओ प्रायः पंपिंग सेट सँ पानि पटाओल जाइत अछि अथवा अन्य कृत्रिम स्रोत सँ, तऽ ओहिमे ईंधन लगैत अछि तऽ पूंजी खर्च होइत अछि। एहि सबके देखैत बेर पर फसल के उपजा नहि भऽ पबैत अछि, जो पटौनी नहि भऽ पबैत अछि, तऽ एहि सबके ध्यान में रखैत केंद्र सरकार द्वारा एकटा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाओल गेल। एहि योजना अंतर्गत स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि के किछु जे दिशा निर्देश अछि ओ देल गेल छनि। जे केओ ओकरा मानैत छथि हुनका

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाओल गेल। अई योजना अंतर्गत स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकन के किछु जे दिशा निर्देश अछि ओ देल गेल छनि। जे केओ ओकरा मानैत छथि हुनका लोकन के चुनल जाइत छनि आ अई योजना अंतर्गत लाभ देल जाइत छनि। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत पटौनी के लेल जे हमरा लोकन कृषि संबंधी उपकरण कीनैत छी ताहि लेल पूँजी देल जाइत अछि। ई पूँजी ऋण के माध्यम सँ देल जाइत अछि, राष्ट्रीयकृत बैंकक माध्यम सँ। एकर संग संग जे केओ अइ योजना सँ लाभ लेबऽ चाहैत छी किसान भाई बहिन लोकनि, हुनका लोकनि के ओहि राजस्व ग्रामक वासी होयबाक चाही। संगे एकटा बैंक मे अपन खाता होयबाक चाहियनि, आधार कार्ड होयबाक चाही, पैन नंबर होयबाक चाही। ई सब आवश्यक कागजात होइत अछि जाहि आधार पर से ई लोकनि अपन अई योजना सँ लाभ उठेबाक लेल पंजीयन करबैत छथि। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सँ लाभ उठेबाक लेल लेल गेल ऋण पर सब्सिडी के सेहो व्यवस्था कयल गेल अछि, जकरा हमरा लोकनि अनुदान कहैत छी। जेना हमरा लोकनि पटौनी लेल सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अछि, एकरा अपनाबैत छी तऽ बेसी लाभ होइत अछि, पानि के बचत होइत अछि। तऽ ई जे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाओल जा रहल अछि, एकरा सँ हमरा लोकनि लाभ उठाबी जे बेरक मांग अछि। बेर रहत तऽ फेर गपशप करब, मुदा आब सुनैत छी एकटा गीत महेश वाणी, तऽ सुनल जाय राधा मोहन मिश्रक गाओल।

एखन हमरा लोकनि राधा मोहन मिश्रक गाओल बड़ नीक महेश वाणी सुनलहुँ आ आब स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभागक सहयोग सँ देल गेल आगामी 24 जून धरिक मौसम संबंधी पूर्वानुमान ई अछि जे एहि अवधिमे उत्तर बिहारक अधिकांश भागमे मौसम गर्म ओ शुष्क रहबाक सम्भावना अछि। 23 से 24 जून के बीच एक दू ठाम 4 से 6 मिलीलीटर हल्लुक वर्षा भ सकैत अछि, जखन कि मधुबनी जिलामे 24 जून को लगभग 65 से 70 मिलीलीटर भारी वर्षा होयबाक संभावना अछि। एहि अवधिमे अधिकतम तापमान अधिकांश ठाम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि। एकर संगे लू के स्थिति बनल रहि सकैत अछि। न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक संभावना अछि। 23 जून के दुपहरिया में कतेको ठाम पर हीट वेव के स्थिति बनल रहि सकैत अछि। एकर विपरीत दरभंगा मधुबनी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीतामढ़ी आ वैशाली जिला में कतौ कतौ मेघ गर्जन आ तेज झोंकाक संग हवा चलबाक सेहो अनुमान अछि। भिनसर में सापेक्ष आर्द्रता 65 से 70% धरि ओ दुपहरिया में सापेक्ष आर्द्रता 25 से 30% धरि रहबाक अनुमान अछि। हवा मुख्यतः एहि अवधिमे पूरब दिशासँ 712 किलोमीटर प्रति घंटाक गतिसँ चलि सकैत अछि। पूर्वानुमानित अवधि के बीच आकाशमे हल्लुक मेघ

सेहो लागल रहबाक संभावना अछि। तऽ ई छल मौसम संबंधी पूर्वानुमान। आ आब स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि, किछु जे कृषि संबंधी समसामयिक परामर्श, ओ ई अछि जे एखनुक वर्तमान बेर मे मानसून के कमजोर स्थिति के देखैत किसान भाई लोकनि के ई परामर्श देल जाइत छनि जे ऊंच भूमि मे धान के खेती नहि करथि। जाहि किसान भाई लोकनि लग पटौनी के पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होन, ओ मध्यम अवधि वाला धान के प्रभेद के जेना राजेंद्र नीलम, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सरस्वती आ राजेंद्र श्वेता के बिचरा बीज स्थली में खसा सकैत छथि। बीज स्थली में पर्याप्त नमी बनाकर रखबाक चाही। ओ गाछ सुखाय नहि, ताहिसँ बचेबाक लेल आवश्यकता अनुसार पटौनी सेहो करबाक चाही। वर्तमान कमजोर मानसून परिस्थिति के देखैत विशेषतः उचास भूमि में धान के बदला में वैकल्पिक फसल के खेती पर सेहो विचार करबाक चाही जे बेसी उपयुक्त होयत। किसान भाई लोकनि के तरकारी में भिंडी, जकरा राम तोरई कहै छी, कद्दू, सजमनि, खीरा, नेनुआ जकरा घेरा कहै छी, करैल आ खरीफ बरसाती तरकारी के बाउग करबाक एखन परामर्श देल जाइत अछि। तरकारी के फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु नियमित रूप से निरीक्षण करबाक चाही आ ध्यान द कऽ कमौनी निकौनी करैत रहबाक चाही, जाहिसँ फसिल के वृद्धि आ विकास नीक जकाँ भऽ सकै। फसिल में पत्ती खाइवला सुंडी आ फल छेदक कीड़ा के प्रकोप जो देखबा में आबै, तऽ साफ मौसम में डाइमोथोएट 30 EC दवाई के 101.5 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकै छी। आवश्यकता अनुसार 5 से 7 दिन के अंतराल पर पटौनी करबाक चाही। ओ खेत में उचित पानी निकास के व्यवस्था बनाकर रखबाक चाही। खरीफ मकई के बाउग एखन कऽ सकैत छी। उत्तर बिहारक लेल अनुशंसित प्रभेद अछि शक्तिमान 2, शक्तिमान 5, शक्तिमान 6, राजेंद्र शंकर मक्का 3। ई सब अनुशंसित आ उन्नत प्रभेद अछि। हरद के बाउग एखन कऽ सकैत छी। एहि लेल उन्नत प्रभेद अछि सोनिया आ राजेंद्र सोनाली। तऽ फेर गपशप करब, मुदा आब सुनै छी ई गीत, तऽ सुनल जाए।

एखन हमरा लोकनि बोध नारायण सिंह के गाओल बड़ नीक ई महेशवाणी सुनलहुँ। आब सुनहि किसान श्रोता भाई बहन लोकनि, हमरा लोकनि समसामयिक जे कृषि कार्य ताहिमे ध्यान दी आ ओहि काजके बेर पर पूरा कऽ लेबाक चाही, तखने मनोनुकूल उपजा होइत अछि। एखन खरीफ प्याजके नर्सरी तैयार कऽ सकैत छी, एहि लेल एकर उन्नत प्रभेद अछि जकरा चुनबाक चाही, ओ अछि एग्री फाउंड डार्क रेड, जकरा ADR कहि सकैत छी, N53, भीमा सुपर आ अर्का कल्याण। ई सब प्रभेद के बीया के हमरा लोकनि के चुनबाक चाही। लीची के फल के तोड़वा के बाद गाछी के आवश्यक जे छटाई कऽ देबाक चाही, जाहिसँ गाछ के भीतर पर्याप्त रौद आ हवा के संचार भऽ सकै। संगहि गाछी मे खसल पत्ता, सुखायल डारि आ अन्य गाछक अवशेष के एकत्र कऽ कऽ हटा दियैक, जाहिसँ कीड़ा आ रोग व्याध के प्रकोप मे कमी होयत आ गाछ स्वस्थ रहत, एकर वृद्धि नीक जकाँ होयत आ विकास समुचित रूपे होयत। दुधारू पशु के तापीय तनाव सँ बचेबाक हेतु छायादार आ हवादार ठाम पर रखबाक चाही आ एकरा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ ओ टटका पेयजल पीबै ले देबाक चाही। दुधारू पशु के संक्रामक बीमारी सँ बचेबाक लेल पशु चिकित्सक लोकनिक परामर्श पर आवश्यक

टीका लगवेबाक चाही आ रोग निवारक उपाय करबाक चाही। एखन गर्म आ शुष्क बेर के देखैत किसान भाई लोकनि के ई परामर्श देल जाइत छनि जे रबी मकई या गर्मा मूंगक कटनी भऽ गेला के बाद एकरा भंडारण सँ पहिने नीक जकाँ सुखा ली आ तकर बाद एकरा सुरक्षित रूपे सुखल ठाम पर भंडारित करबाक चाही। तो ई छल हमरा लोकनि के जे समसामयिक कृषि संबंधी किछु काज करबाक बेर ताहि प्रसंग में गप कऽ रहल छलहुँ। संग संग स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि, हमरा लोकनि जो बकरी पोसैत छी तो एकरा रोग व्याधि पर ध्यान देबाक चाही। गर्मी के बेर में प्रायः एहन देखल जाइत अछि जे बकरी सब सघन रूपे रहैत अछि, एक ठाम रहैत अछि बेसी संख्या में, तो एकरा सबके नोचनी होयबाक संभावना होइत अछि। तो एहि लेल नोचनी के जे दवाई ओ पशु चिकित्सक लोकनिक परामर्श सँ एकरा देबाक चाही जो बकरी के एहन बीमारी होइक। तऽ एकर संगहि संग बकरी के बच्चा के पोसबा पर सेहो ध्यान देबाक चाही। नर बच्चा के बधिया सेहो बेर पर करेबाक चाही तऽ ऐसा लाभ होइत अछि। अहिक संग आब आजो खेती गृहस्थी के बेर संपन्न होइत अछि तऽ स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकनि सँ चलबाक आज्ञा लै छियनि, चलबाक आज्ञा देल जाए उगना भाई के। नमस्कार।

किसान भाई सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है।
2: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
6: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
5: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
6: कहाँ से पता चलेगा?
5: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
7: आज ही सर्च करूंगा।
5: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए। लीजिए सुनिए समाचार।
11: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राज्य के लगभग 4 लाख किसानों के खाते में फसल क्षति अनुदान की राशि अंतरित की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, राज्य में सरकारी भूमि अभिलेखों से मिलान के बाद ही होगा दाखिल खारिज। बिहार पुलिस ने माना भोजपुर मुठभेड़ मामले में हुई लापरवाही, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। और राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में भी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज 3,96,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि अंतरित की है। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत इस वर्ष रबी मौसम के दौरान मार्च महीने में आए आंधी तूफान, असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को फसल क्षति अनुदान के रूप में दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि आगे और भी किसानों को अनुदान राशि दी जाएगी।
12: लगभग 200 करोड़ रुपया की राशि किसानों को इनपुट के तौर पर, अनुदान के तौर पर दिया जा रहा है। ये लगभग 3,96,000 किसानों के द्वारा जो आवेदन दिए गए थे उनको सत्यापित करने के बाद ये एक बड़ी राशि उनको उपलब्ध कराई जा रही है। और भी

0: जो आवेदन आएंगे उनको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा तुरंत राशि उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार करेगी।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से इन योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया।
0: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दो दिन पहले सभी के खाते में उनको किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ आज भी हम लोग इनपुट के तौर पर अनुदान जो देना है उसको भी देने का काम करें। इसलिए दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार के किसान भाइयों को उनके जीवन में खुशहाली रहे इसका लगातार प्रयास कर रहे हैं।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि चंपारण क्षेत्र को देश के प्रमुख गन्ना उत्पादन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए विशेष कार्य योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज पटना में गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य की 9 बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना को गति देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में गन्ना आधारित उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने गन्ना उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने तथा बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत अधिक निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीए सरकार अति पिछड़ा समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित अति पिछड़ा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचार उनके आदर्श हैं। श्री चौधरी ने स्वयं को 36% अति पिछड़ों का रक्षक बताते हुए भरोसा दिया कि राज्य में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि दाखिल खारिज के प्रत्येक मामलों के निष्पादन से पहले उसका मिलान सरकारी भूमि अभिलेखों से अनिवार्य रूप से किया जाएगा। श्री जायसवाल ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम होने की संभावना को समाप्त करना और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिहार पुलिस ने भोजपुर मुठभेड़ मामले में लापरवाही की बात को स्वीकार किया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था सुधांशु कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
2: इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहां गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 1 कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भोजपुर जिले के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में भरत भूषण तिवारी की मौत के मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे रजिस्ट्रार के समक्ष मामले का उल्लेख करें जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। याचिका में मुठभेड़ की घटना की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भोजपुर के शाहपुर में पुलिस मुठभेड़ में युवक की मौत की घटना को दुखद बताया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी, पुलिस दोषी पाई गई तो कार्रवाई होगी।
3: ये घटना काफी दुखद है और सरकार ने इसीलिए अभी न्यायिक जांच का आदेश दिया है। अगर जांच होने के बाद निश्चित तौर पर यदि पुलिस ने जब बिना वजह का जो इनकाउंटर किया है साबित हो जाने पर जाकर के सरकार कार्रवाई कराने का काम करेगी। अब जांच का इंतजार करना चाहिए, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। यदि पुलिस दोषी होगी पुलिस पर कार्रवाई होगी।
1: सुपौल जिला प्रशासन ने जदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगंज पश्चिम पंचायत के दतुआ वार्ड संख्या 10 में कल रात एक श्राद्ध कार्यक्रम में भोजन खाने के बाद 100 से अधिक लोगों की तबीयत खराब होने की खबर को भ्रामक बताया है। जिला जनसंपर्क अधिकारी

0: ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में मामूली रूप से बीमार दो तीन लोगों को ही लाया गया। चिकित्सकों ने उनकी जांच की, जांच में विषाक्त भोजन खाने या किसी अन्य असामान्य लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों से सतर्क रहने की अपील की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को ग्रामीण विकास योजनाओं को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी और अन्य वरीय पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न सेवाओं का शीघ्र लाभ उठाने में यह ऐप अत्यंत सहायक है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने आज विधानसभा विशेषाधिकार न्यायालय कक्ष का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधियों तथा सदन की गरिमा और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। यह न्यायालय सदन के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा। विधानसभा अध्यक्ष इस न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगी। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के जिलों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि कल से पटना, गया और सारण समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में मानसून के सक्रिय होने से बारिश के आसार हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका जताई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात हो सकता है।
1: दिनांक 23 जून राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 घंटे के दौरान भागलपुर, मुंगेर और बक्सर जिले में अनेक स्थानों पर तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नेपाल में बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1,00,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए देर रात बराज से 1,09,55 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इधर जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज कोसी बराज का निरीक्षण किया। उन्होंने बराज और तटबंधों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने हालात पर नजर रखने और सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सभी जिला प्रशासन को मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि बिना लाइसेंस जुलूस निकालने, डीजे और भड़काऊ गाना बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर विभिन्न जिलों में आदेश के अनुपालन के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि 26 और 27 जून को

0: निकलने वाले मुहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इधर रोहतास के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी दीपक कुमार ने आज पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्ण मुहर्रम पहली प्राथमिकता है। किशनगंज के नए जिलाधिकारी नवीन कुमार ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकता है। वहीं जहानाबाद की नवनियुक्त जिला पदाधिकारी छीरिंग वाई भूटिया ने भी अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। अरवल जिले में 28 जून से 2 जुलाई तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बैठक कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुपौल जिले के संयुक्त श्रम भवन में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय पीएम अजय योजना के तहत कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया। विभिन्न कंपनियों ने 350 अभ्यर्थियों में से कई को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में आज से 4 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मियों को कृषि संबंधी सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली, आंकड़ों के संग्रहण, गुणवत्ता नियंत्रण और अन्य विषयों की जानकारी दी जा रही है। सीतामढ़ी प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार योगेंद्र रीगावाल की 32वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय रीगावाल ने लंबे समय तक आकाशवाणी के जिला संवाददाता के तौर पर भी कार्य किया था। लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रिमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राज्य के लगभग 4 लाख किसानों के खाते में फसल क्षति अनुदान की राशि अंतरित की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, राज्य में सरकारी भूमि अभिलेखों से मिलान के बाद ही होगा दाखिल खारिज। बिहार पुलिस ने माना भोजपुर मुठभेड़ मामले में हुई लापरवाही, शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। और राज्य के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, राजधानी पटना समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में भी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी।
1: सहरसा पुलिस केंद्र में समस्तीपुर जिला बल के 234 प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। कोशी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रशिक्षु सिपाहियों का अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

0: अवसर पर प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को सम्मानित भी किया गया। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड की माखर पंचायत में मनरेगा से निर्मित जीविका ग्रामीण हाट का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में 200 से अधिक जीविका दीदियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि यह हाट जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन और स्वरोजगार का बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पशु सखियों, CLF, एंकर पर्सन और LHS के लिए डेयरी और पशु प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण में वैज्ञानिक पशुपालन, पशु स्वास्थ्य और डेयरी प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। वहीं कृषि महाविद्यालय अगवानपुर में आत्मा और कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती, मिट्टी की उर्वरा शक्ति संरक्षण तथा आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। बीते दिनों बिहार गृह विभाग के प्रशासनिक फेरबदल के तहत IPS अधिकारी विक्रम सिहाग को सहरसा का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं निवर्तमान पुलिस अधीक्षक हिमांशु का तबादला शेखपुरा कर दिया गया। सहरसा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर खेल विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में खेल भवन सह व्यायामशाला में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों ने भाग लिया। इधर बीते दिनों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मियों ने बाल श्रम के खिलाफ शपथ ली तथा इसके उन्मूलन के लिए जन जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया।
1: और अब प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
2: सुपौल जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों योजना एवं विकास विभाग के मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने छातापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया तथा अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले में प्राचीन हस्तलिखित और दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज और डिजिटलीकरण का कार्य जारी है। इसी क्रम में जिले के राघोपुर प्रखंड के त्रिलोक धाम गोसपुर गाँव में लगभग 600 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज हुई है। इनमें काव्य अलंकार ग्रंथ कुबल यानंद तथा हस्तलिखित भृगु संहिता शामिल है। विशेषज्ञों ने इसे मिथिलांचल की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जुड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सुपौल पुलिस केंद्र में मधुबनी जिला बल के 217 प्रशिक्षु सिपाहियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। कोशी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रशिक्षु सिपाहियों को कर्तव्य निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से जिला परिवहन कार्यालय द्वारा विशेष चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में चालकों को यातायात नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित वाहन संचालन की जानकारी दी गई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। महात्मा गांधी चिल्ड्रेन पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी सावन कुमार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं सुपौल उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ योगाभ्यास कर योग को दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की।
1: अभी आप सुन रहे थे सहरसा और सुपौल जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही थी हमारी संवाददाता आरती कुमारी, जबकि सुपौल जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय

शाम के 7:52 हुए हैं। समय हो चला है कुछ प्यार भरे फिल्मी गीतों का। एक बार फिर हाजिर है आपके साथ आपका ये रेडियो हम सफर। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आसमान में खिले ये काले काले बादल जैसे गर्मी से राहत दिलाने हमारे लिए ही तो आए हैं। प्यार भरे फिल्मी गीतों के इस प्यार भरी बारिश में हम आपको भिगाते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम के माध्यम से।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे, ये फिल्म थी बेताब। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत राहुल देव बर्मन का। सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दें, आज ही रात 10 बजे से आप सुनेंगे अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अपनी पसंद के प्यार भरे पुरानी फिल्मी गानों को सुनने के लिए आप हमारा ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9430029353, यानी 9430029353। हेलो आकाशवाणी, हमारे इस कार्यक्रम का समय याद रखिएगा, आज ही रात 10 बजे से 11 बजे के बीच। फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं, रजिया सुल्तान फिल्म से। जी हाँ, लता मंगेशकर का गाया हुआ।

खय्याम के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्म थी रजिया सुल्तान। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा, फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। लीजिए इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं। गीत संगीत रविंद्र जैन का है, फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली हो गई। गायक कलाकार लता मंगेशकर।

राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। एक बार फिर लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है आपके साथ।

श्रोताओं, आनंद बख्शी का लिखा ये गीत हम आपको सुनवा रहे थे। धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम था आपके साथ, गायक कलाकार थे लता मंगेशकर।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम। इस समय रात के 8:15 हुए हैं। समय हो चला है हमारे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का।

नमस्कार बंधु लोकनि, स्वागत अछि अपने सब गोटे के मैथिली साहित्य विमर्श पर आधारित कार्यक्रम सिंगरहार में। आजुक अंक में अहां सभक संग पुरबाक लेल आबि गेल छी हम सोनू। आधा घंटाक एहि साहित्यिक यात्रा में अपने लोकनि के मैथिली गीत सुनाएब, कथा कविता सुनाएब, किछु शब्द पर सेहो गपशप करब। ततबे नहि, हम अपने लोकनि सँ साहित्यिक गपशप सेहो करब, खास कऽ कऽ साहित्य पढ़निहार, साहित्य बुझनिहार जे लोक छथि हुनका सबसँ जखन हम गप करैत छी तऽ बहुत आनंद अबैत अछि। आ से ई गप करबाक लेल, सुनबाक लेल अहाँक रेडियो सेट पर तऽ हम रहिते छी, संगहि संग न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यमसँ अहाँक मोबाइल फोन पर सेहो अहाँक संग हम पुरैत छी। बंधु लोकनि, गप तऽ हेबे करतै, मुदा सबसँ पहिने तऽ स्वीकार करू ने हमर नमस्कार। एकटा बात जनै छी बंधु लोकनि, कखनो कखनो अहाँके मन में कोनो व्यक्ति के अपन बात कहबाक रहित अछि, मुदा से कहबाक लेल अहाँ बहुत बेसी शब्द सेहो नहि खर्च करय चाहैत छी। होय जे छोट सनक गप कहिए आ ओ बात के सेहो बुझि जाए

ताहि लेल हमरा अहाँ लग उपलब्ध अछि मारिते रास फकरा सब, जकरा लोकोक्ति सेहो कहै छिए। छोट सनक वाक्यक प्रयोग करै छिए मे, किंतु तकर अर्थ जे छै बहुत व्यापक भऽ जाइत अछि। जे क्यो कहता जे अपन दोख नहि अपर के पर ही गायर, ई एकटा कहावत अपना सब ओहिठाम प्रचलित अछि, मुहावरा छै वा लोकोक्ति कहियो एकरा। नहि अक्सर हमसब उपयोग करै छियै बात के जे अपन दोख नहि अपर के पर ही गायर, कनेक बेटा वाक्य अछि, मुदा एहिमे एकर जे अर्थ छै से बहुत विस्तृत अछि। एतबे कहला के बाद अगिला व्यक्ति बुझि जाइत छथि जे अहाँ हुनका की कह चाहैत छियनि वा ओ की कह रहल छथि जे हुनका अहाँ ई बात कहलियनि। ई जे बात छै ने से मात्र फकराटा में होइत अछि, जकरा लोकोक्ति सेहो कहै छिए। एहन एहन जे छोट छोट वाक्य होइत अछि तकरा कहवी सेहो कहैत छिए, तऽ कतौ कहावत सेहो कहल जाइत अछि। तऽ एहि सब पर हमसब गप करब, से विस्तृत गप करब जे फकरा की भेलै, कहावत की भेलै, एकर उपयोग कोना कोना होइत छै, कोन फकराक अर्थ की होइत छै, एहि सब पर गप सप करब। मुदा खाली गप्पे टा तऽ नहि करब, जखन हम सिंगरहार लग अबै छी तऽ हमरा ध्यान रहैत अछि जे गप्पक सङ्ग सङ्ग मैथिली गीत सेहो अपने लोकनिकेँ सुनाबी।

वाह, मन आनंदित कदलैत। इछलाहा मनोज कुमार महतो। सुंदर सन गीत हम सब सुनलौं, कर्णप्रिय छल एकदम। असल में यह होइ छे, कोनो चीज जखन हृदय में उतरैत अछि ने कोनो शब्द, तो भाव विहोर भ जाइत अछि लोक। आ खास कक अपन जे मूल अछि, अपन जे शब्द अछि, अपन जे मातृभाषा अछि, एकरा में ई क्षमता छै जे केहनो लोक के मोहि लैत अछि। अहाँ कतबो मानसिक रूपे उलझन में किएक नहि रही, मुदा जँ अपन भाषा में, अपन भाषा कोनो लोक अहाँ के प्रेम सँ गप करैत अछि, तऽ निश्चय केहनो बिखैल रहब तऽ मोन कनेक हल्लुक अवश्य भऽ जाइत अछि। से यह खासियत सब तऽ अछि अपन फकरा सबमे सेहो। अभी फकरा कहबै ककरा, सबसँ पैघ बात तऽ से छै। असलमे गाम समाजक जे आम लोकमे प्रचलित पुरान कथन सब अछि, जे कहिया बनल, पहिले पहिल एकर उपयोग के केलनि, तकर कोनो जनतब नहि रहैत अछि। किन्तु ओ सब अदौ कालसँ प्रचलित भेल आइ धरि आबि रहल अछि, आइयो ओ ओहिना प्रयोग कयल जाइत अछि। से मात्र एकर उपयोगे नहि कयल जाइत अछि, अपितु ई वाक्य सबमे गंभीर अर्थ बोधक होइत अछि। लोक एकटा छोट छिन वाक्यसँ कहै छथि, आ ओकर कहबाक जे बात रहै छै से व्यापक रहै छै, ओकर अर्थ जे निष्पत्ति होइत छै से बहुत बेसी रहैत छै, आ लोक ओकर अर्थ बुझियो जाइत अछि सहजताक संग। ताहि लेल से नहि कोनो लोकके बेसी मगजमारी करऽ पड़ै छै, आ नहि फकरा कहानिहारेके सोचऽ पड़ै छै, विचारऽ पड़ै छै, ओ परिस्थिति देखैत अछि आ खटाकसँ ओकरा मुँहसँ निकलि जाइत छैक ओ फकरा सब। आ देखू ने, किछु लोकोक्ति की फकरा जे कहै छै ओहिपर विचार करी हमसब, ओकर अर्थ पर।

0: गपशप करी तो देखियो ने हम किछ एखन से फकरा कहे छी। जेना से हमर जे बड़का भैया छथि हुनका एक दिन हरवाह आबि कऽ कहलकनि जे हयौ अहाँक सबटा जजाति फेकना चरा लेलक। आब बुझू जे तखनेसँ बड़का भैया फेकनाके तकने घूरै छथि। आ जखन कि ओ खेत पर नहि गेलाह, हुनकर खेतक जजाति कनिकबो जे छै से दूर नहि भेल छलनि हँ, से तेसर लोक जखन कहलकनि हुनका जे हो तू जे एते आमिल पेने छ से तोहर जजाति जाकऽ देखलहके, ओ तऽ ओहिना छ, तऽ तू एहने करै छ जेना पहिले कान नहि देखल आ कौआके खेहारने जाइ छहक। ई जे फकरा छै जे पहिने कान नहि देखब आ कौआके खेहारने फिरै छी, एहि ठाम लेल ई एतेक बात कहबाक लेल एकमात्र वाक्यक ई फकरा से सबटा बातके बुझा दैत छै। ओ बात लोक स्पष्टसँ बुझि जाइत अछि। एहने एहने से आर बहुत रास सब फकरा सब अपना ओहिठाम प्रचलित अछि। जेना एकटा कहै छियै ने, लोक देखबै धरफड़ायल आयल, करबाक छै कोनो काज आ कऽ लैए कोनो काज, बर्तनमे देबाक छै कनि दालि एकर मुट्ठी, ओ हड़बड़ायल अबै छै आ कनि चाउरे धऽ दै छै, आ कि कनि देबाक छै ओकरा एक रत्ती जे छै से हरैद कनि एक चम्मच नून धऽ देलक। आ तेहन ठाम लए से एकटा फकरा सब अपना सबके ओहिठाम प्रचलित अछि ने, हरबर्रीके बियाह आ कनपट्टी सिंदूर। मने कि धरफड़मे कोनो टा काज नहि करू, धरफड़मे करबै तऽ गड़बड़ हैत, जतय जे हेबाक चाही काज से ओकर विपरीत हैत। एते बात कहबाक लेल कते शोधल से शब्द छै, छोट सनक वाक्य, दू शब्दक वाक्य, चारि शब्दक वाक्य, अपनामे एकदम जे छै से अर्थक विस्तार लेने रहैत अछि। ई छै प्रभाव हमर अहाँके लोकोक्तिके फकराके। आ जखन प्रभावक गप करै छियै तऽ हमरा अहाँके जे मिथिलाक प्रभाव, मिथिला मैथिलीक प्रभाव, एतुक संस्कारक जे प्रभाव छै से एतुक संतानपर अवश्य देखबामे अबैत छै। तकर कारण अछि जे हमसब जे अपन संस्कार अछि से अपन जे बादक पीढ़ी अछि तकरा दैत छियै, से कोना जे हमरा सबके जे भेटल अछि पूर्वसँ जे संस्कार भेटल अछि, ओ संस्कार हम अपन बादक पीढ़ीमे सेहो देबाक प्रयास करै छियै, ओकरा बुझेबाक प्रयास करै छियै, कोना जीवन जियल जाइत छै से सेहो ओकरा बुझबैत छियै विभिन्न माध्यमसँ। तऽ कोन कोन माध्यम भऽ सकैत अछि, ताहि लेल कोना कोना बुझबैत छियै, आउ ने एकटा काव्य पाठक माध्यमसँ सेहो बुझैत छी, आ तकर बाद फेर फकरापर गपशप करब।
1: हमर पहिल कविताक शीर्षक अछि बेटी। एक घरसँ दोसर घर जाइत अछि बेटी, जेना हो कोनो छोट छीन तुलसीक पोछ, एक ठामसँ उखाड़ल जाइत अछि दोसर ठाम रोपल जाइत अछि, जड़िमे रहैत अछि ओकरा नहिरक माटिक अंश, जड़िमे रहैत अछि ओकरा नहिरक माटिक अंश, जे लऽ जाइत अछि ओ अपना संग, जँ जोरगर छै ओकर कपार निश्चय भेटतै ओकरा विस्तार, दोसर स्वस्थ माटिक संग अपन माटिक अंश, दुनू मिलि पबैत अछि आकार, दोसर स्वस्थ माटिक संग अपन माटिक अंश, दुनू मिलि पबैत अछि आकार, होइ छै ओकर चारू भर पसार, स्वच्छ हवा आ भोरका रौदक संग, स्वच्छ हवा आ भोरका रौदक संग, एक लोटा अछिंजल आ साँझक दीप, सने सने ओ भऽ जाइत अछि झमटगर, हरियर गदरायल आ रमनगर।

मनुष्यक जीवन में सब दिन कष्टे रहल। कहियो मनुष्यक जीवन में सुख नै छैक, से कोना? ठीक सीता जना, जना सीता के सब दिन दुखे रहलैन, सुख कहियो नै भेटलैन, तहिना ई कोनो व्यक्ति विशेष सेहो भ सकैत अछि आ मनुष्य विशेष सेहो भ सकैत अछि। मने सम्पूर्ण मनुष्य के अगर हम एहिमे राखी तऽ सब मनुष्य तऽ सहे अछि, दुखे में अछि, ओकरा सुख कहाँ भेट पबै छै? तऽ ई सब जे छै से हमरा सभक फकरा अछि आ असे असरदार सेहो होइ छै। तहिना एकटा आर छै जे जेहन देवता तेहन पूजा, आ ई बात तऽ देखियौ जे एकदम सत्य छै, से हमसब अपन समाज में सेहो देखै छियै जे जेहन लोक, जेहन पैघत्व वाला लोक, तेकर सम्मान गाम समाज ततेक बेसी करै छै, आ जे कने कम पैघत्व के लोक अछि तकर सम्मानो गाम समाज कमे करै छै। तऽ ई सब जे छै फकराक माध्यम सँ से लोक के कहल जाइत अछि, बुझायल जाइत अछि। आ हमरा सब जखन एतऽ बैसै छियै तऽ प्रयास रखै छी जे आन जे गपसप होइ छै से तऽ हेबे करै, साहित्यिक गप हेबे करै, सामाजिक सरोकार सँ जुड़ल जे गप अछि सेहो हमरा सब करिते छी, आ संगे संग जखन विचारक बात अबै छै, विमर्शक गप अबै छै, तऽ शब्द पर सेहो हमरा लोकनि ध्यान रखै छी, शब्द विमर्श सेहो करैत छी। तऽ एहि क्रममे एकटा शब्द अछि खेहारब। खेहारब मने होइत अछि ककरो पाछू दौड़ब, ओकरा कहै छियै खेहारब, मने भगायब। तहिना दोसर शब्द अछि एकटा, ओहिसँ बनैत अछि खेरहा। खेरहा मने ककरो विषयमे गप करब, मने कहै छै ने ओकर खेरहा कहै छलियै, मने ककरो विषयमे हमसब गप करै छी, नीक बेजाय बाजब। आ खरकट्टल मने की भेलै? खरकट्टल मने भेल एहन कऽ सुखा जायब जे जल्दी छूटै नहि, ओकरा कहै छियै खरकट्टल। ई छलै शब्द विमर्श। तऽ देखू जे हमसब गप केलहुँ फकरा के विषय में, किछु फकरा सब सेहो सुनलहुँ, गीत सुनलहुँ, कव्य पाठक आनंद लेलहुँ। आ देखियो जे आब समय सेहो लगीच भऽ गेल अछि, समय तऽ जतबे अछि ताहि मे हमरा सबके अपन कार्यक्रम के सब रूपरेखा करबाक रहैत अछि। तऽ किएक नहि जय सँ पहिने एकटा आर कर्णप्रिय मैथिली गीतक आनंद हमरा सब लैत चली।

0: सिंगरहार। अभी आप सुन रहे थे हमारा ये मैथिली कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़। साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप के माध्यम से। इस समय रात के 8:45 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

0: इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिदर बंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
2: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बाघुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
6: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित

0: किया जाएगा। काशफिन नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं

0: मंत्री के पद पर बना रहूंगा।
1: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अल काबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते, तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In 2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Intakhab's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
1: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany. To strengthen its position at the top of the medals tally, India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest-growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफ़ुज़ाती निज़ाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैम्पियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज सुपहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाक़ एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज़्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और आग लगने की वजह का तयन करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे ना हों।
4: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
3: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला

0: गुप्ता की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के और नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलूकिन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और ये एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गईं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
2: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असम्बली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नज़रियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबैन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमूई दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अज़म से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसित्सक बतमुंक से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादला ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी, कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और जरई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट

0: भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले, और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
1: जी प्रणत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि EPFO बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी EPFO को सौंपा है। तो EPFO इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो EPFO के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली EPFO एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
1: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है EPFO, नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए।
1: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
0: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं, और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
0: दो बार में दिया
1: जी जाता है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
0: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल EPFO के साथ जुड़ना पड़ता है। EPFO के साथ जुड़ने के लिए जो EPFO में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर EPF में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे EPFO से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर EPF में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने EPFO में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए 2-3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो EPFO में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ EPFO में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ,

0: फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा
1: डीबीटी के थ्रू ही।
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
2: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ, सर ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकता है, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन,
1: क्या पात्रता क्या होनी चाहिए, प्रणी चाहिए
3: बताएं। रवि जी इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आप आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए। तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कंपोनेंट है हमारा कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी आप आवाज सुन पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
4: मैडम कर दिया माना।
1: जी
4: कर दिया
1: सवाल
4: मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी।
4: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है
1: जी पुनेंद्र जी।
0: हाँ इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा, आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट

0: मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो
2: जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से।
1: जी जी
2: मैम, मेरा क्वेश्चन है जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
3: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका जो पासबुक है आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है, तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
4: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो करता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
0: अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं, और जितने जगह पर भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
0: अभी
3: जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका रिमाइंड डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
5: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
5: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
0: नमस्ते
5: जी, मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
0: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है, उसके बाद

0: नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है, उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
0: और कोई दस्तावेज नहीं
1: चाहिए, जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
0: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट है, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है, और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे
1: और
0: सस्टेन करें वहाँ 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
3: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा है।
3: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे है उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
3: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवे के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये 3 स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कंपोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेसलाइन से या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं हटा रहे हैं अगर वहाँ पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें रिटेन करें,

0: उनको ट्रेन करें, तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए।
0: जी,
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
2: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
2: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर।
1: जी।
2: सर, मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नया स्तर से। दूसरा है सर,
0: जी पूछे।
1: जी मोहन जी,
2: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर।
1: जनरलाइज सवाल पूछाना नहीं,
0: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना यह प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी, अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से।
3: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल 2 एम्प्लॉयज एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
3: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
0: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
4: जिला छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे,
4: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है,
1: कौन कौन से सेक्टर?
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है।
1: जी, अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, पीएमवीबी

0: सर्वे डॉट लेबर डॉट जीओवी डॉट इन, इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80. इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं.
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं. पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी.
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा.
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी. धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की. श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े. अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ. तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति. नमस्कार.
2: नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। इस समय रात के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए अपनी पसंद के पुरानी फिल्मी गीतों का हमारा ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: कहते हैं कि हौसलों के तरकस में उम्मीदों का, कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ भले ही सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हमारी ये जिंदगी है, तकलीफें भी आएंगी, परेशानियां भी। इन तकलीफों और इन परेशानियों से लड़ते हुए हमें अपने इस जिंदगी में आगे बढ़ते रहना होगा। अब देखें ना, इन्हें तकलीफ और परेशानियों के बीच एक ऐसा रास्ता निकल ही जाता है जो इन परेशानियों को, इन तकलीफों को एक पल में दूर कर देता है। दिन भर भागते हैं हम अपने अपनों के लिए। कभी सच्चे दिल से पूछिएगा अपने अपनों से, उन्हें आप चाहिए, अपनों को अपनों का साथ चाहिए। आप स्वस्थ रहें, आप बेहतर रहें, आपके अपनों की सबसे पहली ख्वाहिश यही तो होती है। एक बार फिर आपके इसी अपनेपन, आपकी प्यार भरी पसंद के फिल्मी गीतों को आप तक पहुंचाने की उसी उम्मीद में हाजिर है आपका ये रेडियो हमसफर, संजीव कुमार सुधाकर। कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। 9430029353 इस नंबर पर हमें है आपका इंतजार। और बिल्कुल भाई, हम जानते हैं हमारे श्रोताओं को भी रहता है 10 बजे का इंतजार। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, आइए मिलते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।

0: नमस्कार संदीप श्री सुधाकर जी
1: भाई, स्वागत करते हैं। नमस्ते नमस्कार, आप ही की अंदाज में।
0: जी जी, सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। जी जी,
1: कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं सर, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपने जो अनमोल वचन बोले और वो जो दिल में उतारने वाली बात हो गई सर।
1: सच सच सच पूछिए तो ये जो दिल में उतरने वाली बातें होती है ना, आप दिल में रहने वाले आप जैसे लोगों से ही तो हमें सीखने का मौका मिलता है।
0: जी जी, बहुत अच्छे बोले हैं। बहुत कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा संघर्ष।
1: बिल्कुल, देखिए ना, कहते हैं ना कि जिंदगी उस नदी की तरह है जिसके दो किनारे हैं। कभी ये किनारा सुख का होता है, कभी दुख का होता है। हम इन दोनों के बीच से गुजरते चले जाते हैं।
0: जी जी, कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए सर।
1: हम चाहेंगे
0: भी वक्त हो, एक दिन जरूर जीतेंगे।
1: क्या बात है, हम चाहेंगे। वैसे तो हम जान चुके हैं कि हमारे पुराने श्रोता हैं आप, लेकिन वैसे श्रोताओं को भी तो जानकारी हो जाए कि आज हमारे

0: दो किनारे हैं, कभी ये किनारा सुख का होता है, कभी दुख का होता है, हम इन दोनों के बीच से गुजरते चले जाते हैं।
1: जी, कभी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए सर, कैसा
0: हम चाहेंगे,
1: भी वक्त हो,
0: हम
1: एक दिन न एक दिन जरूर जीतेंगे।
0: क्या बात है भाई, हम चाहेंगे। वैसे तो हम जान चुके हैं कि हमारे पुराने श्रोता हैं आप, लेकिन वैसे श्रोताओं को भी तो जानकारी हो जाए कि आज हमारे पहले कॉलर कौन हैं।
1: जी मैं ग्राम भैयापट्टी से मिथिलेश कामत बोल रहा हूँ।
0: मिथिलेश कामत जी का स्वागत करते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं मिथिलेश भाई आज आपको? अपनी पसंद हमें
1: लगाने
0: बताएं।
1: बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है सर।
0: लेकिन मशक्कत के बाद जब फोन लग जाता है तो उसकी दोहरी खुशी होती है ना।
1: जी, खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है सर।
0: तो हम चाहते हैं कि आप ही की तरह और भी जो श्रोता इंतजार कर रहे हैं उनको भी मौका मिले, आप हमें अपनी पसंद जरूर बताएं।
1: जी सर, आज का फिल्म का नाम है फर्ज और गाने का बोल है, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराना, चाहे तू माने चाहे न माने।
0: भाई यही बात तो हम आपसे कहेंगे कि आप भी मानिए, हम सभी आपके तमाम सुनने वालों के, हम तमाम आकाशवाणी के जो भी कर्मी आते हैं ना वो दीवाने हैं। आपके इस दीवानगी को सलाम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार मिथिलेश कामत जी, शुभ
1: नमस्ते
0: रात्रि।
1: नमस्ते।

0: भाई, हम भी अपने सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मनाने आ गए हैं, उन्हें उनकी पसंद के गाने सुनाने आ गए हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा 9430029353, हमारे ये मोबाइल नंबर है। इस जीवंत फोन इन कार्यक्रम में इसी वक्त कीजिए हमें कॉल और सुनिए अपनी पसंद के बेहतरीन गाने। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: स्वागत है आपका जी, अपना नाम बताएं।
1: प्रणाम सर, आप थोड़ा सर स्टाफ को प्रणाम मेरी तरफ से, जितने भी दरभंगा को सबको प्रणाम करते हो सर। मेरा नाम है चंद्रेश्वर साहब, ब्रह्मपुर पूर्वी से बोला हूँ। आखिर फिल्म जो जाना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: क्या बात है भाई, दिल से स्वागत करते हैं। हमारी शायद पहली बार आपसे बात हो रही है। इस कार्यक्रम को कब से सुन रहे हैं?
1: हम तो करीब 1970-72 से सुन रहे हैं सर।
0: ये संयोग है ऐसा कि ये मेरा ही संयोग है कि मेरी ज़्यादा बात नहीं हो सकी थी आपसे। बड़ी खुशी हो रही है, आप जैसा बातों से
1: जी,
0: लग रहा है
1: आप
0: कि
1: आपका भी नाम हम पहले बार पहले हम सीखी थी, देखते थे पहले। अभी कई दिन से पहले कार्यक्रम में पूरा समय देते हैं
0: जी।
1: और दिन भर रेडियो सुनते रहते हैं। हमारा तो जिंदगी में सबसे दोस्त नहीं, सही साथी रेडियो है।
0: बिल्कुल, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, ये तीनों एक साथ आप तक पहुंचाने का सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय माध्यम। आज आपने
1: बहुत
0: अपनी
1: अच्छा प्रोग्राम है। हर पूरा भारतवासी का आदमी सुनता, पूरा देश विदेश में सुनते हैं ये गाना। रेडियो के
0: बिल्कुल
1: माध्यम,
0: बिल्कुल,
1: मोबाइल के माध्यम से बहुत खुशी हो रही है। और
0: तो स्वस्थ।
1: ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए आपके स्टेशन से। एक प्रोग्राम
0: तो
1: रख देते सर, धनक शास्त्रीय संगीत के आधार पर दे देते, कोई प्रोग्राम होगा तो बहुत अच्छा होता। नाच में हो चाहे दिन में हो।
0: देखिए, ये जो तमाम बातें हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, हमारे इस केंद्र से जरूर पूरी करने की हर संभव कोशिश की जाती है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी बातें हों, आप हमारे यहाँ अपने बातों को चिट्ठियों के माध्यम से जरूर भेजें। आपके सारे विचार और आपकी सारी बातों को हम स्वागत करते हैं उनका। और आज बड़ी प्यारी पसंद आ चुकी है आपकी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। सुनवाते हैं बिना देर किए, इसी उम्मीद में कि हमारी आपसे फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्ते सर।

0: सची कहा कि जो कट गई वो उम्र थी, जिसे जी लिया वही तो जिंदगी है। अपने इस पल को जीने का वो समय जब आप दिन भर की थकान को भूलकर सोचते हैं कुछ पल अपने लिए, अपने अपनों के लिए, कल फिर वही जिंदगी, वही भागदौड़, वही हार जीत। इस सब के बीच कुछ पल जब आप अपने लिए, अपनी यादों के लिए बिताते हैं हमारे साथ, सुनते हैं अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम। हेलो आकाशवाणी। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सुधाकर भाई।
0: नमस्कार, जानी पहचानी सी ये आवाज हमारे पुराने श्रोता ताहिर हुसैन साहब का स्वागत करते हैं। नमस्कार, दिल की गहराइयों से आप तमाम सुनने वालों को भी और आपको भी। ताहिर भाई कैसे हैं?
1: ठीक है सर, मौसम तो बहुत बदला हुआ है, आज का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि गर्मी से ज्यादा परेशान
0: है। बिल्कुल सही कहा आपने, शाम से ही थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, मैंने भी महसूस किया। तो ये देखिए ना कितनी जलन देने वाली गर्मी थी और एकदम जैसे जिस्म को जला दे वैसी गर्मी थी। तो होता क्या है ना कि जब इतनी गर्मी होती है ना, उम्मीद ही जब छा जाती है ना, तो ये जो बादल है ना ये विश्वास दिलाने आ जाते हैं कि भाई जो भी चीज़ है वो हमेशा नहीं रहती। आज अगर आपको गर्मी महसूस हो रहा है तो इससे राहत भी ऊपर वाला जरूर देते हैं बारिश की बूंदों के रूप में। देखिए तो ये जो रिकॉर्ड टूटने का जो सिलसिला है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा रिकॉर्ड तोड़ पेड़ पौधों को काटना, अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा आराम तलब बना लेना कि भाई प्रकृति से दूर हो जाना, नदी पहाड़ों को दूषित कर देना। तो ये तो रिकॉर्ड हम लोग तोड़ रहे हैं ना। चलिए हम लोग, ताहिर भाई हम लोग जाग रहे हैं और पेड़ पौधों को जिस तरह से लगा रहे हैं, आने वाले समय में जरूर स्थितियां बदलेगी और हम चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में आपकी ये प्यार भरी बात है हम तक पहुंच रही, पहले हमें अपनी पसंद भी तो बता दें।
1: जी सर, आप किसी भी घर में लगा रहे हैं, सुना दीजिए प्रदीप की आवाज में है, इनका नाम नास्तिक है। गाना भी बहुत अच्छा ही होगा सर, भजन भजन भी गाना मिला हुआ है
0: उम्मीद में कि फिर हमारी आपसे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका। जी अपना नाम बताएं।
1: जी हमारा नाम मोहम्मद दस्तगीर अंसारी है, दरभंगा से बोल रहे हैं, मल्ला फजिल्ला खान खान साहब की हवेली।
0: दस्तगीर साहब हमारे पुराने श्रोता हैं आप, जहाँ तक मुझे याद है।
1: कई बार
0: आपसे हमारी बात हुई है। खैरियत से तो है ना?
1: जी, सेवल्ला करम है, आप खैरियत से है ना सर?
0: दुआ आप जैसे चाहने वालों की, आप सुनने वालों की। दस्तगीर साहब ये बताइए कि इस वक्त खाना वाना खा लिया?
1: जी नहीं, अभी तो खाना नहीं खाए हैं। आप भाई खाना खाने वाले थे कि आपका प्रोग्राम शुरू हो गया था, कहा पहले प्रोग्राम सुने, खाना भी सुने।
0: मतलब गाना और खाना जब एक साथ होता है तो और ज्यादा मजा आ जाता है, दुगुना। मतलब
1: वो जमाना याद है सर हम लोग को भी।
0: जी जी,
1: जब हम लोग खोज के रेडियो सुबह करते थे, उस जमाने में रेडियो बहुत कम था, तो फिर हम लोग जो है कि रेडियो हम लोग खरीदे, खरीद के जो आज तक हम लोग सुन रहे हैं।
0: मतलब आप लोग बिल्कुल रेडियो के वो पहले आशिक हैं।
1: जी जी जी जी
0: हम लोग तो बाद में आए, लेकिन
1: सिस्टम में एक कि सिलोन हम लोग सुनते थे, वो सिलोन का हम लोग प्रोग्राम सुनते थे, विविध भारती का प्रोग्राम सुन, और बहुत सारा सिस्टम ऑल इंडिया भी था।
0: तो दस्तगीर साहब ये बताइए कि बस खाना भी आपका तैयार है, तो हम चाहते हैं कि भाई गाना भी तैयार हो जाए। दस्तगीर साहब की पसंद हम जानना चाहेंगे आज। हेलो दस्तगीर साहब की पसंद जानने से पहले ही उनका फोन

डिसकनेक्ट हो गया। खैर दस्तगीर साहब, आप रेडियो सेट पे शायद अपनी आवाज़ इस वक्त ना सुन पाए, लेकिन चलिए आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। पुराने श्रोता हैं आप हमारे, फिल्म हीर रांझा से।

0: सची कहा कि थक गए हैं पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का, सफर है अभी जारी। अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का ये फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हेलो आकाशवाणी। हेलो
1: आदाब सर। आदाब।
0: आदाब भाई, हम चाहेंगे अपना परिचय हमें दे।
1: मैं लाल कोखर नगर मोड़ 5 से मोहम्मद कलीम बोल रहा। संजीत कुमार
0: स्वागत करते हैं हम कलीम दीवाना साहब का, हमारे पुराने श्रोता। ढेर सारी चिट्ठियां भी आपकी विभिन्न कार्यक्रमों में आने वाली। कैसे हैं कलीम दीवाना साहब? बिल्कुल अच्छे हैं। और देखिए ना, ये एक अच्छा सा संयोग है कि अभी आपके कॉल से पहले ही फैजुल्ला खान

अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों को सुनने के लिए इस जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप हमें कीजिए हमारे इस नंबर पर कॉल। हम नंबर आपको बता दिए 9430029353 यानी 9430029353। हेलो आकाशवाणी, आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति। एक बार फिर इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो, प्रणाम सुधाकर भैया।
0: प्रणाम भाई, स्वागत करते हैं। हमारे पुराने और वरिष्ठ श्रोता की आवाज लग रही है।
1: हम मुबारकपुर रेली से अकरम बोल रहे हैं, गांव को कोटवन्ना जिला दरभंगा वाले।
0: स्वागत करते हैं जिला दरभंगा कुटमन्ना के हमारे अकरम साहब का, पुराने श्रोता हैं। बड़ी प्यारी प्यारी पसंद आती रहती है आपकी पुरानी फिल्मों से, लाजवाब की।
1: हाँ, रहती है तो भैया, लेकिन ये प्यासा फिल्म जो है, समझ गए, इसमें तो कई गाने हैं, लेकिन
0: जी जी
1: एक गाना में जो है, बारिश हो रहा था रिकॉर्डिंग के टाइम में, तो संगीतकार नहीं पहुंचा, समझ गए भैया, संगीतकार नहीं पहुंचा, तो रफी साहब को बोला कि गुरु दत्त के आप ऐसे गाना गाइए, तो बोला इसमें संगीत सही नहीं, कुछ नहीं है। बोला नहीं, जरा आप गाइए, समझ गए ये साधु की दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मेरे कॉलर भैया सब जब ध्यान से, ये गाना तो अभी हम नहीं सुनाएंगे, इसमें संगीत नहीं है, बाकी और कोई गाना हो तो रफी की और इसकी आवाज में सुना दी।
0: मतलब आज ये गाना आप नहीं सुनेंगे, इसी फिल्म का कोई और गाना हम आपको सुना दें, है ना? आज हमसे नाराज तो नहीं है ना आप?
1: नाराज नहीं है, कोई बात नहीं, फिर देखा
0: अच्छे तो हैं,
1: जाएगा।
0: अच्छे तो
1: अरे
0: हैं, अच्छे तो
1: इसीलिए
0: हैं।
1: ये बात सब जो है ना, वो रेडियो पे विद्वार से पे हर दिन अलग अलग कलाकार आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तो हम
0: बिल्कुल
1: दिमाग में
0: बिल्कुल
1: सेट कर लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेते हैं। और ये जो दिमाग में सेट कर लेते हैं, ये बड़ी प्यारी बात जो आपने कही ना अकरम साहब, इसी दिमाग में सेट करने के लिए तो हम आप रेडियो सुनते हैं, जहाँ सूचना भी हमें मिल जाता है, शिक्षा की बातें भी होती हैं। जैसे आपने कहा दिमाग में सेट कर लिया, बेहतरीन बातों को ज़रूर दिमाग में सेट करना चाहिए। और आज प्यासा फिल्म का कोई प्यारा सा गीत हम आपको सुनाएं, तो गीता दत्त और
1: हाँ, गीता दत्त की रफी की आवाज में है, बहुत टॉप है, सारे गाने टॉप है। हाँ
0: सारे गाने टॉप है। और हम समझते हैं कि जब आप देखेंगे कि भाई रेडियो की बात होती है, तो कुछ ऐसे गीत हैं ना प्याशा फिल्म के, वो आज भी आप सुनते हैं तो दिल उसी समय उसी दुनिया में उसी यादों में खो जाता है ना करम साहब? चलिए ना हम आप सब मिलकर उस यादों को याद करें, खो जाए अपने उन पुराने यादों में। ये गीत आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब, नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम भाई, प्रणाम।

0: अपनी पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का ये जीवंत फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हेलो आकाशवाणी। हेलो,
1: हाँ सर नमस्कार
0: स्वागत करते हैं हम आपका। जी अपना नाम बताएं।
1: जी सर गजराज लोधी बात कर रहा था, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: क्या बात है भाई गजराज लोधी साहब, हमें याद है कि इस कार्यक्रम में पहले भी बात हुई है शायद कभी आपसे।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर होइए बिल्कुल होइए।
0: नाम बड़ा प्यारा है आपका, कभी इंसान जल्दी भूल नहीं सकता है, बड़ा प्यारा नाम है भाई गजराज।
1: अच्छा वाह वाह वाह, तारीफ के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: और बताइए मध्य प्रदेश का कैसा मौसम है, कैसे हैं इन दिनों?
1: सर मौसम ठीक है, कभी कभार बारिश हल्की सी हो रही है, मतलब जितनी बारिश चाह रहे हैं उतनी बारिश नहीं हो पा रही है।
0: मतलब बिल्कुल ये जो बिहार का इधर का हालात है वही सेम सेम जा रहा है ना। खाना वाना हो गया?
1: मगर कुछ ही समय बाद, मतलब कुछ ही समय बाद बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम बन रहा है। और थोड़े बहुत दिनों में हम लोग बोनी भी कर लेंगे, लगभग 2-4 6 रोज में बिल्कुल बारिश हो जाएगी।
0: लेकिन इधर तो थोड़ी सी बारिश हुई है, आज शाम में भी हुई है और स्थिति बनी हुई है, थोड़ी सी बादल घिरे हुए हैं, तो ये मौसम है ये रंग दिखाता है। मैंने कहा था आज इस कार्यक्रम के, देखिए जब बदन जलाने वाली गर्मी आती है ना, तो वो गर्मी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती, ऊपर वाला प्यार भरे बादल भेज ही देते हैं, गर्मी को भी ठंडा होना ही पड़ता है ना। गजराज साहब आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: रजिया सुल्तान का सुनवा दीजिए सर। हाँ
0: रजिया सुल्तान का बोल बताएंगे।
1: सर बोल मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है।
0: हम समझते हैं कि
1: रजिया सुल्तान में कोई कोई भी गीत दीजिए, उसमें से बढ़िया लगते हैं मुझे।
0: बड़ी प्यारी फिल्म है भाई, पसंद आपने की है। इस फिल्म में सारे गीत बेहतरीन हैं, कहते हैं ना कि संगीत के क्षेत्र के जो बेहतरीन कलाकार हैं उन्होंने संगीत पे काम किया है। खय्याम साहब का संगीत है इस फिल्म में और गाने भी लाजवाब हैं। स्वर कोकिला कहते हैं जो भारत रत्न लता मंगेशकर के गाए हुए गीत हैं, बेहतरीन गीत हैं। तो सच पूछिए ना, तो कई पुराने गाने जो है ना वो एक तरह से उपहार है हमारे लिए, आपके लिए, आज जो लोग नए हैं उनके लिए वो सोने चांदी से भी बढ़कर एक ऐसा उपहार है जो ताउम्र हमारे साथ रहेगा, आने वाले लोगों को, पीढ़ियों को भी वो सुनने को मिलेगा, है ना।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल,
0: तो ये प्यारी सी बात,
1: इन आवाजों को हम कभी भूल नहीं सकते, हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेगी।
0: बिल्कुल हमारे साथ हमेशा जिंदा रहेगी।
1: हाँ
0: तो ये प्यारी सी पसंद आई है जो मुझे आपने छोड़ा है, तो मैं रजिया सुल्तान का एक गाना जो मुझे

0: भी बार बार सुनना पसंद आता है, ऐ दिले नादान।
1: हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छे गीत है सर।
0: मतलब इस गीत में कुछ ऐसी बातें हैं जो जिंदगी की सच्चाई को बयां करता है। अब देखें ना, कई ऐसे इसमें शब्द उपयोग किए गए कि वो कहीं ना कहीं जिंदगी को, हर इंसान को छूते हैं, कहीं ना कहीं
1: जी।
0: इंसान उस एहसास को जीता है। आप अगर महसूस
1: हाँ
0: करते हैं तभी उस गाने से जुड़ जाते हैं। और प्यारी सी पसंद, प्यारी सी फिल्म से आपने ली है गजराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये प्यार अपनापन बनाए रखिएगा।
1: ओके सर, धन्यवाद, शुक्रिया,
0: नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नादान सा ये दिल, हजार ख्वाहिशें। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी अब बिल्कुल अपने अंतिम दौर पर आ चुका है। आज का ये अंक अब समापन की ओर बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ कम से कम कुछ और श्रोता जुड़ चुके। हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आपको नमस्कार, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं हम आपका। जी अपना नाम बताएं। रामबिलास साह जी, सोहरा आनंदपुर, मतलब नजदीक से ही हमारे इस केंद्र के पुराने श्रोता हैं।
1: बैटरी वाला गाड़ी चलाते हैं बाजार में रहते हैं। अभी जो फरमाइश के चलते हम बाजार से दूर के आए हैं, जो फरमाइश करेंगे और गाना सुनेंगे।
0: ये प्यार, ये अपनापन, यही तो हमें ताकत देता है कि भाई अब कैसा भी मौसम हम चले आते हैं। राजकुमार साह जी है ना, तो ई रिक्शा आप चलाते हैं?
1: ई रिक्शा चलाते हैं।
0: सब बढ़िया चल रहा है ना? सब बढ़िया तो चल रहा है ना? तो हम चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम का जो घड़ी की सुई हमें बता रही है, आज आप आखिरी कॉलर है, कौन सा गीत सुनवाएं आप, आपके माध्यम से तमाम सुनने वालों को भी अच्छा लगे।
1: तो फिल्म का है
0: जी जी,
1: रामचंद्र आएगा।
0: क्या लगता है कि बिल्कुल वैसा कलयुग आया कि नहीं? ऐसा कलयुग आया कि नहीं ये बताइए आप तो अनुभवी हैं। कलयुग आया कि नहीं? मतलब इस गाने में जो बातें कही गई है वो आपको लगता है कि नहीं कि सच हो गई? चलिए बिना देर किए हुए सुनवाते हैं आपको गोपी फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी का गाया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हेलो आकाशवाणी, इस कार्यक्रम के आज के इस सफर में अब हमारा आपका ये साथ यहीं तक। कहते हैं मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, सच्चा फैसला हो तो फासला क्या है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ दीजिए अपने इस रेडियो हम सफर को अब इस कार्यक्रम से विदा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे अपनी ही पसंद के पुराने फिल्मी गीतों का ये जीवंत फोन-इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। रात के 11 होने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु की अधिकांश

0: छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत की प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते।

0: transplantation. In shooting, India added 4 more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Zue in Germany to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। इस समय रात के 11:10 हो चुके हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये सांध्यकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। इसी मीटर पर कल सुबह 5:49 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।